FM बैंड 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 6वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026।

FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में प्रस्तुत है हिंदी में समाचार और उसके बाद विविध भारती मुंबई से प्रस्तुत कार्यक्रम वंदन वार। इंतजार बस कुछ क्षण का।

0: సమాచారం.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे. ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे. इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे. ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है. पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे. कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया. योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है. श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है.
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ.
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे. ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी. न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है. एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया. कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी. वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है. वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे. श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं. वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया. विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है. श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है. दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे. इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: ये है
0: विविध भारती।

Chintan. संस्कृत का एक श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात जो आलस

करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते, जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये था चिंतन, अब भक्ति संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान आज भाग 225। संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आज तीसरी कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर।

8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, सुबह और शाम 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा जो केंद्रित होगा निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। सुबह 10:00 आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी, कहानी निवेदिता श्रीवास्तव की, संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11:00 चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो कार्यक्रम में विश्व योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से बातचीत योग के विषय पर। 12:05 पर यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर। 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3:00 मनचाहे गीत कार्यक्रम होगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप नाटक सुनेंगे मृत्युहीन प्राण। मृत्युहीन प्राण नाटक का पहला भाग आज सुनवाया जाएगा, मूल बांग्ला नाटक आलोक भट्टाचार्य का, हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठौलिया, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार, कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से बातचीत का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में शाम 4:00। शाम 5:00 छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार तीसरा भाग। जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम शाम 7:00। 7:45 पर जिज्ञासा। रात 8:00 हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में

कहानी स्वामिनी का तीसरा भाग। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक, 8:45 पर समाचार, 9 आपके लिए, रात 10 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। तो ये था लिखा चुका आज दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए रामचरितमानस गान, आज भाग 225।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नर नारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हीं वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं, उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के आंसू।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम वंदन वार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति कार्यक्रम सुप्रभात सुनिए 7:40 पर। समाचार प्रभात का समय रहेगा 8 बजे और 9:20 पर सुनिए विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति कार्यक्रम आज के फनकार।

हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 1:05 पर और 1:10 पर सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

3:55 का समय रहेगा था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल बी रिलीज द 23rd इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।

रात 11 बजे सुनिए एपिसोड ऑफ स्पेशल प्रोग्राम सीरीज ऑन कंपटीशन ऑफ 12th ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी आप सुन रहे थे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में सुनेंगे आप संस्कृत में समाचार। इंतजार बस कुछ देर का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज

0: दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। हरियाणवी लोक रंग के आज के कलाकार हैं मोहन शर्मा डाटा वाले वे साथी कार्यक्रम की पहली रागिनी।

पाप के साजी खेल रहे थे। देखे

नकुल सहदेव भीम बलि अर्जुन धनुर धारी देख जुआ के मां ला भैया न

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग आकाशवाणी के सार केंद्र से। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं।

ये सुना भाइयों आपने, हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के तहत मोहन शर्मा डाटा वाले व साथियों की आवाज में गाई रागनिया। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुप्रभात में सभी सुनने वालों को मीना ठकराल का नमस्कार। आज की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज का दिन 20 जून का दिन शनिवार, विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 चल रहा है। सूर्य उत्तरायण में है और वर्तमान में शीघ्र ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव बना हुआ है। आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि को सनातन परंपरा में साहस, ऊर्जा और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक माना जाता है। सूर्योदय का समय सुबह 5:40 पर रहा और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:15 पर। चंद्रमा आज सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल प्रातः लगभग 9:00

से 30 मिनट बजे तक रहेगा, 30 मिनट तक रहेगा, और इस अवधि में नए शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं हिसार का मौसम। हिसार के आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम लगभग गर्म रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक तथा न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब सबसे पहले करते हैं हम ईश्वर की वंदना।

अब हम लेते हैं आज का सुविचार। श्रोताओं, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन हमें कुछ नया सीखने, कुछ नया समझने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। अक्सर हम सफलता को केवल मंजिल से जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तव में सफलता उस साहस का नाम है जो कठिनाइयों के बीच में हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, रास्ते कठिन दिखाई देते हैं, पर परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिलते। ऐसे समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी बनता है। याद रखिए, बीज को भी वृक्ष बनने में पहले अंधेरी मिट्टी में संघर्ष करना पड़ता है। यदि वह संघर्ष से घबराकर रुक जाए तो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां हमें रोकने के लिए बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। इसीलिए परिस्थितियों से घबराइए मत, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति और अनुभव में बदलिए।

अब हम लेते हैं गीता के कुछ श्लोक। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही, अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था, दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सुत ही राज नृप दिन्हा, हरि हित आपु गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वनों में खुद चल दिए। जब प्रताप रवि भयाऊ, नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई, वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश भी नहीं रह गया था।

अब लेते हैं एक प्रेरक कहानी। एक गांव में एक परिश्रमी किसान रहता था। उसके खेत में पानी की भारी भारी कमी थी, जिससे उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह अपने खेत में कुआं खुदवाकर ही रहेगा, ताकि इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। वह एक दिन मजदूर के पास गया, कुआं खुदवाने का काम शुरू करवाया। मजदूर ने कुछ दिन मेहनत की, लेकिन थोड़ी खुदाई के बाद ही काम अधूरा छोड़कर चला गया। किसान चिंतित हो उठा। उसने दूसरे मजदूर को बुलाया, लेकिन इस बार उसने सोचा, नए मजदूर को आधा खुदा हुआ कुआं क्यों दूं? उसे तो उतने ही पैसे मिलने हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं नए सिरे से खुदाई शुरू करवाऊं। इसी सोच के कारण हर बार नया गड्ढा शुरू होता, थोड़ी खुदाई होती, फिर काम अधूरा छूट जाता था। कुछ ही समय में खेत में कई अधूरे गड्ढे बन गए, लेकिन एक भी कुआं तैयार नहीं हुआ। आखिरकार किसान थक हार कर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर उससे कहां गलती हो रही है। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने उसे उदास देखा, उसके पास आकर उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने अपनी पूरी व्यथा उसे सुनाई। बुजुर्ग मुस्कुराए और शांत स्वर से बोले, तुम हर बार नई शुरुआत कर देते हो, लेकिन किसी एक काम को पूरा करने के लिए धैर्य नहीं रखते। यदि तुम एक ही जगह पर लगातार मेहनत करते तो अब तक पानी निकल चुका होता। यह बात किसान ने के दिल को छू गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह किसी भी पर निर्भर नहीं रहेगा, एक ही स्थान पर पूरी लगन से मेहनत करेगा। अगले ही दिन उसने खुद कुआं खोदना शुरू कर दिया। वह बिना रुके बिना हारे लगातार मेहनत करता रहा। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसे पानी मिल गया। अब उसका खेत हरा भरा हो गया और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। मित्रों, बार बार नई शुरुआत करने से नहीं, बल्कि एक ही कार्य को निरंतरता और धैर्य के साथ पूरा करने से सफलता मिलती है। दूसरों पर अधिक निर्भरता और अधूरी सोच हमें लक्ष्य से दूर कर देती है।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि

0: सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जहरा और हो जहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दिनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती

0: पहुंचा। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल है और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती है।
0: वही भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि दयाघर हमारी बिटिया को उतनी ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

आइए सुने चित्रलोक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की हैं। पहले गाने में जावेद अख्तर के बोल अनु मलिक की तर्ज है।

जावेद अख्तर का लिखा ये गाना कहता है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। और पंछियों से ये याद आया कि आज बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली की याद का दिन है। 20 जून 1987 को 90 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। सालिम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में पक्षियों का जितना अध्ययन किया है, एक जीवन में कोई भला इतना नहीं कर सकता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े रहे सालिम अली, और उन्होंने पक्षियों पर कई किताबें भी लिखी हैं। जर्मनी में जाके उन्होंने पक्षी विज्ञान की ट्रेनिंग ली थी और बर्लिन यूनिवर्सिटी में उनके गुरु बने इरविन स्ट्रेसमैन। 1930 के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था पक्षियों को लेकर, और उनकी कई किताबें जो हैं पक्षी विज्ञान पर हैं और बहुत ही मशहूर हैं। और

में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारे जर्नल्स भी लिखे हैं। उनका एक लेख है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ संडे मॉर्निंग, बहुत ही मशहूर है। और इसके अलावा उनकी सबसे ज्यादा मशहूर किताब है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, यानी भारत में पाई जाने वाली तमाम जो चिड़ियाएं हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अध्ययन किया था। जंगलों में अपनी दूरबीन और अपने बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर भटकते रहते और पक्षियों का अध्ययन करते रहते। ऐसे जुनूनी लोगों को सलाम जो पर्यावरण के लिए कर देते हैं सारा जीवन उनके नाम। रेखा भारद्वाज की आवाज, फिल्म का नाम ओ रोमियो।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्र।

0: 21 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, सांस के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25%

0: जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

बासु भट्टाचार्या ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: बासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सी

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार में, जिसका आपके साथ साथ हम सबको भी बेसब्री से इंतजार रहता है।

0: तो नमस्ते हिसार में सबसे पहले वक्त हो चला है हमारे आसपास की खबरों के बारे में बताने का। खबर वही जो सच बताए और सच वही जो हमें जागरूक बनाए।
1: हरियाणा सरकार ने आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरिकल्चर और सीड प्रोडक्शन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। इससे किसानों को उन्नत बीज, नई तकनीक और अधिक आय के अवसर मिलेंगे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के क्षेत्र के विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। यहाँ से घरेलू उड़ानें संचालित हो रही है। भविष्य में इसे एविएशन हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम जारी है। हिसार स्थित कृषि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बादल, तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। आकाशवाणी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेगी। योग, प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित चर्चाएं, विशेषज्ञों के विचार और प्रेरक संदेश श्रोताओं तक पहुंचाए जाएंगे। यह आयोजन स्वस्थ तन स्वस्थ मन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है।

श्रोताओं, अब समय हो गया है आपके ज्ञान को परखने का। हम पूछने जा रहे हैं आज के दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अपने उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। नंबर को एक बार फिर से सुनिए, 9729253272। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से चुने गए भाग्यशाली विजेता की पसंद का गीत हम अपने कार्यक्रम के अंत में सुनाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार नहीं है? प्रश्न को फिर से नोट कीजिए, ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार नहीं है? श्रोताओं, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न को दोबारा से सुनिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है?

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: हर सुबह एक मौका है
6: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
5: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
6: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
5: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
6: आकाशवाणी हिसार के साथ।
7: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
5: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
6: रोज सुबह 7:40 पर
5: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will you be remembered as a great scientist, said La Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें,
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
5: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
6: अभी न जाऊं छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
7: अर्ज किया है रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया।
0: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
2: RADIOHISAR यानी रेडियो हिसार @gmail.com पर
0: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद।

0: कार्यक्रम के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
1: हर मंगलवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: दोस्तों आप जुड़े हैं मीना ठकराल के साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार में, और अब सुनते हैं एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में।
1: भारत की उस महान धाविका से जिन्हें पयोली एक्सप्रेस और भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी के नाम से जाना जाता है, वो है पीटी उषा। पीटी उषा का पूरा नाम पिल्ला वुल्ला कांडी थेके प्रांबिल उषा है। उनका जन्म 27 जून 1964 के को केरल के कोझिकोड जिले के एक छोटे से गांव पयोली में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मी उषा ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनके सपनों की उड़ान कभी नहीं रुकी। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने दौड़ने की प्रतिभा सामने आने लगी। उनके कोच ओएम नामबियार ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया। उषा ने अथक मेहनत, अनुशासन, समर्पण के बल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। सन 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर बादा दौड़ में भाग लिया। वो मात्र 100वें सेकंड से पदक जीतने से चूक गई, लेकिन उनका प्रदर्शन पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन गया। उस समय पहली बार भारतीय एथलेटिक्स को विश्व मंच पर इतनी बड़ी पहचान मिली। 1986 के एशियाई खेलों में पीटी उषा ने स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी गति, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के ने उन्हें भारत के महानतम खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने खेलों से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की स्थापना की, जहां वे नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए नई चैंपियन तैयार कर रही है। पीटी उषा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और कभी हार न मानने वाले जज्बे से मिलती है। उन्होंने साबित किया कि यदि इरादे मजबूत हो तो छोटे गांव से निकलकर भी विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई जा सकती है।

श्रोताओं, अब हम नजर डालते हैं 20 जून के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता से जुड़ी घटना इसी दिन हुई।

जिसने ब्रिटिश शासन और बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन से सिंहासन पर आसीन हुई। उनका शासनकाल ब्रिटिश इतिहास के सबसे लंबे और प्रभावशाली कालों में से एक माना जाता है। 20 जून को ही यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच सीधा संवाद संभव हो सका। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में देश में आर्थिक उदासीकरण और शुरुआत हुई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। प्रणब मुखर्जी को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वह हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। आइए इतिहास में सीखते हुए आगे बढ़ें और हर दिन को यादगार बनाने का प्रयास करें।

तो अब कार्यक्रम में हम बात कर लेते हैं स्वस्थ जीवन शैली के बारे में। दोस्तों, दवाई का खर्च बचाना है तो आदत बदलो, डॉक्टर नहीं। सेहत का राज 100 गोलियां खाने में नहीं, रोज की 4 आदतों में है। सुबह की शुरुआत में उठते ही क्या करते हो? चाय, मोबाइल, रुक जाओ, पहले 1 गिलास पानी। उठते ही दिन की शुरुआत पानी से ही कीजिए, तो आप उठते ही अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। खाने की प्लेट का भी नियम होता है। खाने में सब्जी व सलाद के रंग जितने ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा विटामिन आपके शरीर को मिलेंगे। खाने में दालों को भी शामिल करें, जिनसे हमारे शरीर को काफी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। चावल को भी शामिल कीजिए, जो हल्का भोजन भी है और एनर्जेटिक भी है। और हाँ, फोन साइड में रख दीजिए। टीवी देखते हुए खाओगे तो भी पता नहीं चलेगा कि आप कितना खा रहे हैं, पेट भरा है या खाली है।

जिम जाने का वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में सीढ़ी है ना, दिन में 3 बार चढ़ो उतरो, दिल भी मजबूत, पैर भी मजबूत और मूड भी फ्रेश। इसे ही तो कहते हैं फ्री भी और फायदे भी। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल दूर रख दीजिए, क्योंकि स्क्रीन की ये जो नीली रोशनी है ये दिमाग को रिलैक्स नहीं रहने देती। ये तो कहेगी सो ही मत। इसका मतलब क्या, करवटे बदलते रहो, नींद का कोई ठिकाना नहीं। तो दोस्तों, अच्छी आदतें अपनाइए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, और इसी तरीके से हम आपको स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारियां देते रहेंगे।

श्रोताओं, आज के प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले दिया है गांव सुई तहसील भवानीखेड़ा जिला भिवानी से बलजीत मनकस, मूर्ति देवी, संतोष, प्रदीप, दीप्ति, वीरेन मनकस ने। तो आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

चलिए वक्त हो चला है हमारे प्रश्नों के सही जवाब जानने का। श्रोताओं, आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है नेपाल। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है नेपाल। हमारे दूसरे प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कान में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से। अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे विद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहां से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय?
1: थोड़ा सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
0: जी, कम से कम 20
1: कम से कम 20 मिनट।
0: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
1: दिल से निकालें तो 45 मिनट, एक घंटे कर लें तो सोने पर सुहागा है।
0: क्या बात है
1: जी।
0: जी तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
1: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
0: जी,
1: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
0: जी
1: से रिलेटेड।

0: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: जी
0: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सिटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन।
1: जी, तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? रामरी, शीतली,
0: जी,
1: है ना।
0: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, वस्त्रिका करके अपने फेफड़े
1: सबसे पहले भस्त्रिका करना है,
0: कपालभाति,
1: सबसे पहले कपालभाति। जी,
0: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
1: इतने सारे कर रहे हैं।
0: हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
1: अच्छा,
0: ये पूरा पैकेज हो गया।
1: जी,
0: ये
1: जी, जी।
0: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
1: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे,
0: जी,
1: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
0: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है,
1: जी,
0: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
1: अच्छा,
0: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
1: अच्छा,
0: हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं।
1: जी जी,
0: जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है।
1: जी,
0: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं।
1: जी,
0: और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तक जग भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है। तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: जो हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते, जैसे इंजन में व्हील ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है।
1: जी,
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना, हम रेडियो पर हैं तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है।
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं सकते,
0: दिखा नहीं सकते।
1: पर भ्रामरी प्राणायाम वही है ना, जिसमें उंगलियों से आंखों
0: को बंद करते हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है।
1: जी,
0: मुंह बंद रखना है।
1: हाँ,
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है।
1: जी,
0: और मुंह बंद करके ही नाक से श्वास को छोड़ना है और हमिंग करना चाहिए, बटरफ्लाई की तरह।

0: जी, और
1: और
0: उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर
0: जी
1: में, तो जब वहां कंपन होता है तो वहां से फिर वो श्री कृष्ण होता है,
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है।
1: फिर उसके
0: तो
1: बाद
0: प्राणायाम की बात हुई,
1: जी
0: ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है।
1: जी
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए।
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा
1: योग का मतलब ही है जोड़ना,
0: जी
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से 12 राइट लेग से। तो एक राउंड आप पहला दिन करिए,
0: अच्छा
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए।
1: बढ़ाते
0: नहीं,
1: जाइए।
0: कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ

0: ये सही कर रहे हैं। तो
1: जी
0: जोश में आकर होश नहीं खोना है,
1: बिल्कुल
0: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं,
1: जी
0: योग को धीरे धीरे जोड़ना है।
1: जी सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
0: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
1: काफी होता है।
0: काफी होता है।
1: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूं। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
0: जी जी जी सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है।
1: जी
0: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है। इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंग आसन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बो जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
1: मिल जाता
0: मिल
1: है
0: जाता है।
1: जी।
0: ये
1: तो
0: सबसे
1: ये एक
0: इम्पोर्टेंट है
1: सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
0: सूर्य नमस्कार,
1: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते
0: जोश
1: हैं।
0: में रहते हैं। और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
1: जी,
0: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब
1: और
0: से
1: आपकी
0: वो
1: जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
0: उसके
1: वो
0: अनुसार।
1: बाकायदा ईमानदारी से
0: जी
1: बताना है कि
0: हाँ,
1: भाई ये
0: जिन
1: समस्याएं
0: जिनकी
1: हैं।
0: एज ज्यादा है उनको ध्यान में रखना है
1: मैं वही
0: इन
1: पूछने आ
0: सबको।
1: रहा था बिल्कुल कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
0: जी,
1: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
0: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे ऐसे शिष्य हैं जो कि एज उनकी काफी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं।
1: जी,
0: क्यों कर लेते हैं कि वो शुरू से ही
1: नियमित
0: वो
1: रूप से करते आए
0: नियमित
1: हैं।
0: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह को अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
1: जी मैं समझ गया।
0: जी,
1: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
0: कोई भी चीज इसमें ऐसा मना ही नहीं, लेकिन हर योग को कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से बाधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीजें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। पहले कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूं कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं,
0: जी
1: लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
0: जी
1: और दिन दिन भर बैठे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं, और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं,
0: जी
1: टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो
0: जी
1: लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं
0: जी
1: वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं,
1: जी
0: आज का जो समय चल रहा है यूनिवर्सिटी, लोगों का हर चीज पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीजें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है, जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियां जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, वो उनको ख्याल

0: नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है, क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
1: जी
0: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीजें हैं जो वहां टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं। उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत ही
1: आपने इस तरह से वर्गीकरण
0: फायदेमंद
1: कर
0: है।
1: लिया है,
0: जी
1: अलग अलग लोगों के लिए
0: हाँ,
1: अलग
0: जिससे
1: अलग
0: सब
1: तरह के
0: सभी
1: योग
0: स्वस्थ
1: जो है
0: रहे।
1: तय कर लिए
0: जी
1: आपने। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का
0: जी
1: काम आप कर रहे
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा
0: जी
1: है। बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है, क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
0: अब कोर्स बहुत ही बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति। और जब से कोरोना का समय आया है
1: जी
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति। लोग
1: जी
0: अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना, इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है। और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह। अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाएं पिएं, कैसे जिएं कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
0: जी रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
1: चमत्कार
0: चमत्कार और संभव नहीं है,
1: जी।
0: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
1: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं जंक
0: हाँ,
1: फूड
0: 5 साल में, दो साल में,
1: खा
0: हाँ, इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा।
1: के जी
0: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे। योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
1: अच्छा
0: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
1: जी
0: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां अमीनों की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी कर
1: स्कूल में
0: सकते
1: हो,
0: हैं
1: कॉलेज में हो,
0: आप,
1: घर पे हो।
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
1: जी
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
0: जी
1: खड़े हो जाते हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
1: जी
0: मस्तिष्क से ही,
1: जी
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीजों को आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया। तो कहने लगे कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी, जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है अब देखेंगे तो फिट ही रहते हैं
1: जी।
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। युवा शक्ति भी अब हमारे जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं और वो सब चीजों को समझते हैं और हमसे आपसे ज्यादा जागरूक हैं, और उनको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नव युवकों में तो बहुत परिवर्तन आया, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहां स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है
0: जी,
1: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए।
0: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हो चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है लैपटॉप स्क्रीन का जो जमाना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपनी लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उससे हमें क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या जरूरी है, स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी, एक और बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ, वह है हमारी महिलाएं, उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं
0: जी,
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं
0: जी,
1: बच्चों को भी ध्यान देना है और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है, ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है, और रही बात उनको खुद की अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियां हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है, तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालकर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह तरह की,
1: मन भी कई बार अशांत रहता है,
0: अशांत रहता है मन, और

0: सब मन से ही सारी चीजें होनी है। और बहुत से ऐसी जो व्याधियां हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीजें हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग मेडिटेशन और
1: क्या महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं कर सकती है? बहुत अच्छे से कर सकती है, करती हैं
1: जी,
0: लेकिन ज्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती है, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती है।
1: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा।
0: हाँ, सीख ले तो वो बेहतर है, क्योंकि योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है
1: जी,
0: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है
1: जी,
0: तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे। पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
0: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
1: मतलब हर साल 21 जून को करते हैं?
0: 21 जून को साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के,
1: हाँ,
0: योगा मैट भी खरीद लेते हैं।
1: हाँ,
0: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं
1: जी।
0: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें
1: जी,
0: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें। यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है। और
1: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे।
0: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
1: जी।
0: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल

0: दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में गीत दीवाना फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा और नदीम श्रवण का संगीत।
1: देखा छ

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स, इस फिल्म से। ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुंझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमां। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात हो

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाद दोपहर हुगली जिले के तारेश्वर से 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली जाएगी। 23वीं किस्त में 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए डाले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गुरुग्राम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि तथा गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा ने विशिष्ट

0: अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री के संबोधन और राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने प्रोत्साहन राशि वितरण से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योग और श्रम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि उद्योगों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कुशल श्रमिकों की भागीदारी से उद्योगों की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोजगार आधारित विकास मॉडल और विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और हरियाणा में आज से 22 तारीख के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आपको वापस लिए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मजा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा जरूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहां से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहां का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश की बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारी लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारी लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहां से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहां का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें जरूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताजा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकहीं झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही है, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके

में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है और गजल सुनना चाहते हैं। देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल है। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, हम सफर में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए, कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरह तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं, तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

0: लगता है घड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी लग।
2: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है गर्मी भी होती है लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है, कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियां हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियां हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारे पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताजा कर जाता है।

हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें, और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है। बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर।

मैंने प्यार किया ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहां का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहां पे गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस खत्म हुआ तो निकल पड़े और जोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुंच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर इंसान को सीखना जरूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है, आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारी श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बारा खंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर जरूर बचें इन सब चीजों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहां तहां कैसे करके इंतजाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाएं लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जयकुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बुमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियात हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और भैया झूठ मूठ चली ही जाओ।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छुपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुड़ू, बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुड़ू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हीं गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। दिस डिस्ग्रेसफुल ऑन आवर पार्ट।
4: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
3: हाँ, वही तो देख रहा हूं।
4: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
5: ए लड़की, यहां अकेली क्या कर रही हो?
3: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यू ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
3: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
3: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
4: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
3: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूँ?
3: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
3: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
3: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइश की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
3: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
4: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं।
3: हाँ जाओ जाओ।
4: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
3: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।

0: मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ,
1: क्यों री बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना।
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, यानी क्या ऊटपटांग बके जा रहा है?
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कभी बेंजामिन मलोयस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ दी, पागल कहीं का।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से है, वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा होगी कोई हा? पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। इस कविता को सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
2: वाह वाह क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।

0: You are now a poet. And in time, you will be a great poet, Binge.
1: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
0: हाँ?
1: हाँ, हकीकत यही है। अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
0: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
1: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
0: किस लिए आई हो, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
1: नहीं,
0: कुछ भी नहीं समझते?
1: बताओगे नहीं तो समझूंगा कैसे?
0: सारी बातें मुझसे कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती हैं। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
1: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
0: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
1: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
0: बेंच,
1: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ ला देना, सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जीनी।
0: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
1: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जीनी।
0: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
1: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
0: अब, अच्छा मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
0: हाँ मौसी हो गई।
2: अभी थोड़ी चाय तो पी कर जा।
0: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है।

0: सर बहुत ही भला लड़का है, जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: चरित्र। विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन, मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कौले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ चलाकर राख का डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बाबू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंच?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं। ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
6: अच्छा अच्छा, देखिए आप लोग
1: देखिए। बाबू
3: जी,
1: बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं।
6: अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
7: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
6: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
6: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आ बेटी, आ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरी लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए

0: कि ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूं इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
1: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापालकर का सुझाव एकदम सही है,
2: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल सोच से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
0: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उई सिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
1: कौन कौन कौन हो सकता है? कौन है? कौन कौन है?
2: अरे ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे कैसे हुआ ऐसा?
2: क्या बात है?
4: क्या हुआ?
2: खून खून है क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने
1: ईश्वर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं कुछ ही दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: चलिए पहले पहले मैं ये बैंडेज बांधू।
2: देखो जैसे भी हो रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
0: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
2: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए
6: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए।
2: देखो
6: ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू बाबू दरवाजा जरा देर से खोलना।
6: अच्छा, आता हूं।
7: हिंद,
4: आप लोग
7: जरूर अंदर देखो, ये जल्दी क्विक कहां जा रहे ये सब?
8: तो आप ही जोसेफ पिस्ते हैं?
2: जी हाँ सर।
8: ये कौन है? सर वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी जेम्स पिस्ते।
9: गाड़ी का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
2: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
8: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
2: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
8: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
9: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
2: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
8: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
9: मिल गया सर।
8: क्या मिल गया?
9: जात पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
8: यू आर राइट
9: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
8: तो मिस्टर जोसेफ पिस्ते,
3: अब सर बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया?
2: जी
8: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
2: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी,
4: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते
8: सर। मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
2: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुसाया।
10: इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह,

0: वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस। और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री। अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। द रिजोल्व टू मेक द कंट्री अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, टू मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ आर ग्रेट नेशन सेफ, सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल। To help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
0: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल। When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, we as part of India have to make India a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947. Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. Yeah. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen, we see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are doing so many steps. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to

0: the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. एंड आई वॉन्ट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government. That is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: Bilkul, Vikasit Bharat ki baat aapne ki hai aur ek sarkar ki ek jo nayi pahal hai, desh mein jis tarah se कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिलमैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके. आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले. जैसे आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए. और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो. आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं. रहे हैं यहाँ पर.
0: Absolutely, Siddharth, the word that you've used and you had used this word earlier as well, which is सशक्त बनाना. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question, and that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere.

0: स्वयं उस डिवाइस से, यूजिंग दैट मोबाइल फोन यू कैन डू वट एवर यू विश टू. यू कैन गेट दैट डायरेक्ट ट्रांसफर, यू कैन चेक योर बैंक अकाउंट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. यू कैन गेट ऑल दोज बेनिफिट्स टुगेदर. एंड हाउ एग्जैक्टली डज दैट हेल्प यू? इट हेल्प्स यू टू बी अ फार्मर ऑफ द 21st सेंचुरी. इट हेल्प्स यू टू बायोडाइवर्सिफाई. इट हेल्प्स यू टू नॉट जस्ट गेट स्टक इन द रट लाइक द फार्मर्स ऑफ द yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing truck flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो. और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है. और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं.

0: करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri R.N. Ravi and the Chief Minister of West Bengal, Shri Subendu Adhikari. People training their necks now. The national anthem and the national song.

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे
0: मंच
1: देश में
0: पर
1: उपस्थित हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: हम
0: रहा
1: उनका
0: है और वो
1: हार्दिक स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: पश्चिम
0: तरफ
1: बंगाल
0: से
1: दिवस मनाने के
0: ये लोगों की
1: अलावा
0: आवाजें,
1: माननीय
0: उनको
1: प्रधानमंत्री
0: अभिवादन

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country, various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways, so many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव,

और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए,

में भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष। बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाई बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल 1 तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो

जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था,

वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से

लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं, बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं, एकोन काट माने से का शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, किंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी

आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: Moving towards the future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. अब समय है आपसे विदा लेने का. श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया. इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ. नमस्कार.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम। ये आकाशवाणी हिसार है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:35 होने को हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति।

संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार पर लीजिए प्रस्तुत है। आज के इस सफर का हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। मोहब्बत की खुशबू कभी पुरानी नहीं होती। वक्त के पन्ने दोस्तों भले ही बदल जाएं, लेकिन दिल के किसी कोने में बसे कुछ गीत हमेशा ताउम्र जवां रहते हैं। उन गीतों की धुनें ऐसी होती हैं जो पहली मुलाकात की मुस्कान बन जाए, तो कुछ नगमे श्रोताओं बिछड़ने की यादों का एहसास ताउम्र दिलवाते रहते हैं। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे लेकर हाजिर हूं आकाशवाणी हिसार के स्टूडियो से। मैं शिवानंद वाशिष्ठ और सुनते हैं उन सुनहरे दौर के गीतों को, जिन गीतों के संगीत में मिठास थी, शब्दों में अपनापन था, एहसास था, और गीत गीत श्रोताओं सीधे दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचते थे और सीधे दिल से निकले हुए संदेश हम तक पहुंचे हैं। व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं आप तमाम श्रोता, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता उदय भानपाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और तमाम परिवार के सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित बोट। पनिहार से हमारे श्रोता रहेंगे ममता, कविता, रोहित, विनोद टेलर। गांव चौधरीवास से जिला हिसार से राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी और तमाम परिवार के सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ मेरठ कैंट से यह संदेश हम तक पहुंचा है दिग्दर्शन और कविता गोड कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। वरवट वकाल उल्ढाना से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे। लालगिर गोस्वामी, हिमलता, हिमा, हर्षित कौर, खुशी गोस्वामी, ये तमाम श्रोता जुड़ेंगे। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से हमारे श्रोता रहेंगे यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान।

राहुल शुभम प्रियंका आंचल कुंज प्रभु पर्व प्रवीण चिराग रजत और राजेश धीमान। इन तमाम श्रोताओं के साथ शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। गांव लोगड़ ठाकुरवाला से हमारे श्रोता रहेंगे स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा सोनिया साईराज और विशाल सपकाल। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से श्रोता जुड़ते हैं कार्यक्रम से अभिजीत ग्रहण कर रही श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश प्रणीता सिद्धांत और टुक टुक गवाहकर। और लीजिए जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं काव कुमार हेड़ा सहारनपुर से यह संदेश हम तक पहुंचा है सैयद मसरूर साइना हसन नक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम और अदीब का। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता कार्यक्रम से जुड़ते हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा मलकापुर से नारायण सोपान और आशीष मुरहेकर नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर निर्मला और विशाल नवानकर। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे का आगाज करते हैं और सुनते हैं आरडी बर्मन का संगीत पद किया वो नगमा जिसे सुर दिए जिसे स्वर दिया किशोर कुमार ने और किशोर कुमार ने इस गीत को श्रोताओं कालजयी बना दिया। गीत प्यार की गहराई और सच्चे प्रेमी के जज्बातों को खूबसूरती से बयां करता है। गीत फिल्माया गया उन हसीन वादियों में राजेश खन्ना साहब और हिमा मालिनी जी ने शानदार अभिनय इस गीत में किया इस फिल्म में किया। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा और फिल्म रहेगी कुदरत जो आई थी 1981 में। इश्क की राह में शब्द कम पड़ जाते हैं जब एहसासों के दरिया आंखों में बह जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते वो तो बस दिल की धड़कनों में बस जाते हैं।

हमें तुमसे प्यार कितना ये हम बता नहीं सकते। श्रोताओं, बेशुमार मोहब्बत हम आकाशवाणी हिसार के तमाम चाहने वालों से करते हैं, क्योंकि श्रोताओं आप भी आकाशवाणी हिसार से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार पर संदेश आपके गीत हमारे, और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का एक और नगमा आप तक पहुंचाते हैं। बहरहाल, आपने किशोर कुमार साहब का गाया वो गीत सुना जिसे कह सकते हैं कि किशोर कुमार के बहुत सारे गीतों में से मास्टर पीस था ये गीत। बिल्कुल श्रोताओं, हसीन वादियों में फिल्माया गया। और अब आपको लिए चलता हूं एक बार फिर उन बर्फीली वादियों में, उन हसीन वादियों में जहां गीत फिल्माया गया अमिताभ बच्चन साहब और अभिनेत्री रेखा जी पर। और सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता रहेंगे सहावर रोड गंज डुंडवारा यूपी से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमशूल कमर राही, और इन श्रोताओं के साथ बेवड़ी मध्य प्रदेश से श्रोता जुड़ेंगे हुकुम कर्मकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तन्नू। इन श्रोताओं के साथ लीजिए अगला संदेश पहुंचा है हम तक ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। छत्रपति संभाजी नगर से हमारे श्रोता रहेंगे राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश राशि, राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और जिला हांसी दुर्गा कॉलोनी से हमारे श्रोता रहेंगे राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। और लीजिए जिला हांसी से जिला भिवानी की तरफ रुख करते हैं। दादरीगेट जिला भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। चक 5MD पतरोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता, पप्पू महक, सुनीता, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और तमाम परिवार के सदस्य। और लीजिए सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से श्रोता जुड़ रहे हैं श्री राम कुमार रिवार्ड, श्रीमती

0: जी, चंद्रकला रेवाड़ जी। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयेश नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सदस्य। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका और अरोड़ा परिवार के तमाम छोटे बड़े सदस्य। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से ये संदेश हम तक पहुंचा है। श्रोता रहेंगे मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर। तो आइए श्रोताओं, अब आपको वो गीत सुनवाता हूं जिस गीत को स्वर दिया लता मंगेशकर और स्वयं अमिताभ बच्चन साहब ने। शिव हरि का संगीत रहेगा। जावेद अख्तर साहब ने इस गीत को लिखा और श्रोताओं, प्रेम की कोमल भावनाओं से सजा ये मधुर संगीत और काव्यात्मक अंदाज अपने आप में इस गीत को और भी विशेष बना देता है। तो आइए सुनते हैं सिलसिला फिल्म का ये गीत, 1981 में फिल्म आई। कुछ लम्हे जिंदगी में ऐसे भी आते हैं जहां खामोशियां भी बातें करने लगती हैं, जहां आंखों की जुबां दिल के राज खोल देती है और मोहब्बत की कहानी खुद ब खुद बन जाती है।
1: तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

श्रोताओं, सिलसिला फिल्म का गीत आपने सुना, ये कहाँ आ गए हम? तो हम बता दें कि भाई श्रोताओं, आप आ गए हैं हमारे दिल में और हम आ गए हैं आपके दिलों में। बहरहाल, दोनों आ गए हैं उस मुकाम पर जहाँ अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वायदे के साथ कि अगले किसी कार्यक्रम में खूब सारे गीतों के साथ फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। बहरहाल, अब समय कह रहा है कि आपसे लें अनुमति, तो कार्यक्रम समेटने की अपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ को दें अनुमति। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आकाशवाणी हिसार सुनते रहें। नमस्कार।

0: दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
5: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
4: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
5: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
4: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
5: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
4: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
6: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
7: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
8: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
7: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
9: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
9: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
10: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
5: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
4: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
5: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
4: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
5: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
4: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
6: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
11: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
11: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

0: बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समय है कार्यक्रम रूपरेखा का, तो जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 6:20 पर श्रोताओं आप सुन पाएंगे प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत, और 6:30 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम पर विशेष कार्यक्रम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। समय रहेगा शाम 6:30, कार्यक्रम रहेगा युवा उमंग। शाम 7:00 किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा श्रोताओं कपास की फसल की देखभाल और विशेष प्रबंधन कीट से कैसे करें। 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम महारे गांव, कार्यक्रम के अंतर्गत मानसून से पहले ग्रामीण इलाकों की में तैयारी की विशेष व्यवस्था कैसे की जाए। समय रहेगा कार्यक्रम का 7:30। रात्रि 8:00 सुनेगा श्रोताओं परिक्रमा, और 8:30 पर खुला आकाश के अंतर्गत सुनेगा श्रोताओं आज

भेंटवार्ता, शरीर की गतिशीलता और संतुलन के लिए योग महत्वपूर्ण। भेंटदाता रहेंगे वीरेंद्र सिंह। रात्रि 8:45 पर सुनेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार, तदुपरांत रात्रि 9 से 10 बजे तक सुनेगा विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनेगा श्रोताओं कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण और रात्रि 11 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, 11:05 पर होंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा, आप सुन पाएंगे रात्रि 11:10 से रात्रि 11:45 तक। ये आकाशवाणी हिसार है, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब श्रोताओं गुमशुदा संबंधी सूचना। प्रदीप पुत्र प्रेम निवासी गांव फरासी तहसील हिसार जिला हिसार से 9 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से लापता है। गुमशुदा व्यक्ति का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 22 साल, कद 5 फुट 2 इंच, शरीर सामान्य, रंग गेहुआ, लंबुतरा चेहरा, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, भोला है। जिस किसी व्यक्ति को इससे संबंधित यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो थाना अग्रोहा जिला हिसार में सूचित कर सकता है। गुमशुदा संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी हिसार है, अगला प्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। 9,44,00,000 किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि डाली गई। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पलवल और हथीन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत देश भर में मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी। और हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में प्रायोगिक अभ्यास किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। मैं देख के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता।
0: 23वीं किस्त में 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा।

0: इस उपलक्ष्य में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान की छोटी छोटी चिंताओं का भी हल हो।
1: मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, मेरे किसान डगमगाए ना, उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319,13,00,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में पहुँच जाएगी।
0: उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण इस योजना का लाभ किसानों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में क्लॉक टावर के नजदीक सफाई अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वयं भी श्रमदान किया और लोगों से भी सफाई अभियान में सार्थक सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तिका भी लोगों को वितरित की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री पर देश के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है, दुनिया के अन्य देशों के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है। अमेरिका की बाल्टिक कंसल्ट सर्वे कंपनी ने श्री मोदी को दुनिया में सबसे मजबूत और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी के हाथों में देश का खजाना सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, इसीलिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है।
2: 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हेल्थ में भी, कृषि में भी और शिक्षा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहाँ हाईवे बने हुए हैं, एयरपोर्ट दुगने से ज्यादा हुए हैं, मेडिकल कॉलेज दुगने से ज्यादा हुए हैं, एमपीबीएस की सीट दुगने से ज्यादा हुई है, एक्सपोर्ट जो रक्षा का उत्पादन है वो भी 35 गुना बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी लगभग 57 गुना ज्यादा हुआ है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% हुआ है, जिससे 64% डीजल की खपत कम हुई है।
0: श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का कार्य किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, महाकाल मंदिर, केदारनाथ व बनारस मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज हथीन में भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रवीण डागर व हरजीत डागर भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और जन कल्याण को समर्पित हैं।
3: मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास के, विकास के और जल कल्याण के। कहते नीयत साफ हो और नीतियां सही हो तो परिणाम जमीन पर देखने को मिलते हैं। मोदी जी की सरकार में मोदी जी खुद की नीयत भी साफ है, उनकी नीतियां भी स्पष्ट हैं, इसलिए 12 सालों में देश के लोगों ने विकास के परिणाम देखे। मोदी जी पहले दिन से राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर आगे बढ़े।
0: उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम प्रधानमंत्री की सोच का परिचायक है। श्री गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों में जहां कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुए हैं, वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने का कार्य किया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कॉलेज खोले गए हैं। इन 12 वर्षों में रेल व सड़क संरचना का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरा दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। हरियाणा सरकार ने नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए कल परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क बस सुविधा दी है। नीट प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद सहित विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन व आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रायोगिक अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त संजय जून तथा उपायुक्त आयुष सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, योग संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों सहित लगभग 1400 लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। कार्यक्रम के दौरान हरित योग की थीम अनुसार वृक्षारोपण भी किया गया। अधिकारियों व प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक लोगों को योग से जुड़ने का आह्वान किया। कैथल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश राविश ने आज अतिरिक्त अनाज मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रायोगिक अभ्यास में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। श्री राविश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदल और कलायत में विधायक सतपाल जांबा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आयुष विभाग और पतंजलि के सहयोग से आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इस शिविर से राज्य सरकार की फिट हरियाणा पहल को नई दिशा मिल रही है। शिविर के माध्यम से योगयुक्त नशामुक्त हरियाणा एवं औषधीय पौधारोपण द्वारा हरित योग का प्रभावी संदेश दिया गया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार स्थित नई सब्जी मंडी में अटल किसान श्रमिक कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन में किसानों, श्रमिकों व मंडी में कार्यरत मजदूरों को 10 रुपए में पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा,
4: घोषित नई योजनाएं श्रमिकों के लिए है, चाहे वो बीमा की बात हो, 60 साल का कोई भी श्रमिक हो जाता है उसको केंद्र सरकार की तरफ से भी 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है और हरियाणा में 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और भी बहुत सी योजनाएं हमारे श्रमिक के लिए है, चाहे वो बेटी की शादी केंद्र कन्यादान हो, चाहे मकान बनाने की बात हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश भर के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाने देने का काम किया है।
0: खंड कार्यक्रम प्रबंधक अनु मलिक ने बताया कि हिसार में ऐसी 6 कैंटीन है।
5: कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनकी महिलाएं करेंगी। इस कैंटीन में जो खाना मिलेगा 10 रुपए में थाली दी जाएगी और 20 रुपए में थाली रहेगी, 10 रुपए गवर्नमेंट देगा। टोटल हिसार में 6 कैंटीन चल रही है।
0: डिजिटल भारत निधि कोष के तहत दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत BSNL को देश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में 1.5 करोड़ FTTH कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए सुनते हैं प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति युवा उमंग।

0: प्राउड टू बी एन इंडियन.
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है.
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं.
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं. 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार.
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
4: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है.
3: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
4: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए.
3: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
4: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है.
3: वाह, ये तो बहुत जरूरी है.
4: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे. अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं.
5: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें. जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा.

दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी का साथ और 102.3 मेगाहर्ट्ज की मधुर तरंगों पर आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम युवा उमंग। मैं आपकी रेडियो दोस्त अनन्या ठकराल
1: और मैं दीपिका। दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो हम आज बात करेंगे योगा के बारे में और लेंगे अन्य जानकारियाँ।
0: तो आइए एक नजर डालते हैं आज के कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं पर। सबसे पहले होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी भिवानी आयुष विभाग की योगा इंस्पेक्टर ऋतु चौहान जी, जिसमें हमारा विषय होगा स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग।
1: इसके बाद सुर्खियों में बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की। फिर खेल जगत की ओर रुख करेंगे, जहां सोनू अमरवाल जी आपको बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक हुए मुकाबलों के बारे में और हर प्रतिभागी टीम देश के स्थिति के बारे में।
0: और कार्यक्रम के अंतिम चरण में उठाएंगे एक गंभीर सामाजिक मुद्दा, किशोरों में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह सफर होगा स्वास्थ्य, खेल और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों से भरपूर। दोस्तों, कल का दिन पूरे विश्व के लिए बेहद खास है, क्योंकि 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
1: जी हाँ, योग जो भारत की प्राचीन विरासत है, आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति का संदेश दे रहा है। इसी खास अवसर पर आज हम बात करेंगे योग के महत्व, इसके रोचक तथ्यों और इसके अद्भुत लाभों की।
0: तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको योग की उस यात्रा पर ले चलेंगे जिसने भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत बनाया है।
2: योग सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है, जो उम्र के हर पड़ाव पर शरीर, मन और आत्मा को संतुलन देता है। और इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं योगा विशेषज्ञ भिवानी आयुष विभाग की योगा इंस्पेक्टर ऋतु चौहान जी। ऋतु जी, आपका हार्दिक स्वागत है योगा दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि योग को आप कैसे परिभाषित करेंगे।
3: मेरा स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योग का अर्थ है जुड़ना। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला एक प्राचीन अभ्यास और दर्शन है। यह संस्कृत शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला और विज्ञान है।

0: जो आंतरिक शांति व संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के समय में योग की जरूरत पहले से ज्यादा क्यों महसूस की जा रही है।
0: जी आज के समय में योग की जरूरत कई गुना बढ़ गई है। इसके प्रमुख कारण तनाव, एंजाइटी से राहत, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल दबाव के कारण मानसिक तनाव आम हो गया है। शारीरिक निष्क्रियता, डेस्क जॉब्स और घंटों एक ही जगह बैठे रहने से पीठ दर्द, गर्दन दर्द और मोटापा जैसी समस्याएं आजकल आम बढ़ रही हैं। फेफड़ों की क्षमता, खराब हवा और प्रदूषण के इस दौर में योग और प्राणायाम फेफड़ों को शुद्ध करके उनकी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी, नियमित योगाभ्यास से बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। बेहतर नींद, स्क्रीन टाइम और तनाव बढ़ने के कारण अनिद्रा की समस्या बढ़ रही है। योग हमारे दिमाग व मन को शांत करके अच्छी नींद लाने में मदद करता है।
1: बहुत
0: क्रॉनिक बीमारियों से भी बचाव करता है योग।
1: बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को इसके बारे में समझाया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज इस योगा दिवस का थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, आपके अनुसार इसका क्या महत्व है?
0: जी, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती उम्र के साथ वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और तनाव मुक्त रखना है, ताकि वे बिना किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक समस्या के एक गरिमामय जीवन जी सके।
1: श्रोताओं, इससे हमें पता चलता है कि योग करने की कोई उम्र नहीं है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, किसी भी उम्र में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग किया जा सकता है। आपने संक्षिप्त में बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे और सरल तरीके से हमें इसके बारे में समझाया। तो जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, योग केवल आसनों का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है और इसके लाभों को महसूस कर रही है।
3: बिल्कुल दीपिका, नियमित योग करने से केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि तनाव कम हो जाता है, एकाग्रता यानी फोकस बढ़ता है, मन में पॉजिटिविटी का संचार होता है। यही कारण है कि योग आज वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक बन चुका है।
2: तो आइए योग के इसी सुंदर संदेश को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक गीत, जो हमें आत्मबल, सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति की प्रेरणा देता है।

0: दीपिका, अभी कुछ देर पहले हम योग की बात कर रहे थे। योग हमें शांति, संतुलन और संयम का संदेश देता है, लेकिन कभी-कभी लगता है कि अगर यही सिद्धांत देशों के बीच भी अपनाया जाए तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है।
1: बिल्कुल अनन्या, और शायद इसी वजह से आज का हमारा अगला विषय भी बहुत खास है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति समझौते की, जिसकी चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है।
0: दीपिका, मैं हमेशा सोचती हूँ कि आखिर अमेरिका और ईरान का मामला इतना बड़ा क्यों माना जाता है? जब भी इनके बारे में खबर आती है तो पूरी दुनिया का ध्यान उधर चले जाता है।
1: देखो, इसकी वजह सिर्फ दो देशों का आपसी विवाद नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियों में से एक है, जबकि ईरान मध्य पूर्व का एक बेहद महत्वपूर्ण देश है। मध्य पूर्व को दुनिया का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल और गैस मिलती है।
0: मतलब अगर वहां तनाव बढ़ता है तो उसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहता। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर व्यापार तक बहुत सी चीजें प्रभावित हो सकती हैं।
0: लेकिन ये तनाव आखिर शुरू कब हुआ?
1: अगर इतिहास की बात करें तो अमेरिका और ईरान के रिश्तों में बड़ी दरार 1979 की ईरानी क्रांति के बाद आई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ा, आर्थिक प्रतिबंध लगे, आरोप

0: प्रत्यारोप हुए और कई बार हालात बहुत गंभीर भी हुए।
1: यानी यह कुछ महीनों या कुछ सालों की कहानी नहीं, बल्कि दशकों पुरानी कहानी है।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब भी दोनों देशों के बीच बातचीत या समझौते की खबर आती है तो पूरी दुनिया उसे बहुत ध्यान से देखती है।
1: दीपिका, हाल के महीनों में जो तनाव बढ़ा था वह कितना गंभीर था?
0: काफी गंभीर था अनन्या। दुनिया भर के विशेषज्ञों को डर था कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, वैश्विक व्यापार, तेल बाजार और पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
1: और इसी बीच एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
0: हाँ, अब इसे आसान भाषा में समझें तो मान लो किसी शहर की एक मुख्य सड़क हो जिससे ज्यादातर वाहन गुजरते हैं, अगर वह सड़क बंद हो जाए तो क्या होगा?
1: पूरा ट्रैफिक जाम ही लग जाएगा।
0: हाँ, सही कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के लिए ऐसी ही एक मुख्य सड़क का काम करती है। दुनिया के तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसीलिए जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है।
1: तो क्या यही वजह है कि लोग समझौते को इतनी राहत भरी खबर मान रहे हैं?
0: बिल्कुल अनन्या, क्योंकि लंबे समय से तनाव, बयानबाजी और अनिश्चितता का माहौल था। ऐसे में बातचीत की शुरुआत होना ही अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है।
1: और शायद यही कारण है कि दुनिया के कई देशों ने इस पहल का स्वागत किया है।
0: हाँ, क्योंकि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, उसका असर अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता है।
1: वैसे दीपिका, एक बात बताइए, जब दो देश लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसका होता है?
0: अगर गहराई से देखें तो सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। महंगाई बढ़ सकती है, व्यापार प्रभावित हो सकता है और विकास की गति धीमी पड़ सकती है।
1: यानी जिन लोगों का राजनीति या कूटनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है, वो भी प्रभावित होते हैं।
0: बिल्कुल, इसीलिए जब शांति की कोई पहल होती है तो उसे सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से युवाओं को भी एक बहुत अच्छी सीख मिलती है।
0: हाँ, आज सोशल मीडिया के दौर में छोटी-छोटी बातों पर बहस और विवाद बढ़ जाता है, लेकिन यह घटना हमें सिखाती है कि संवाद के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए।
1: क्योंकि जब बातचीत होती है तो समाधान की संभावना बनी रहती है।
0: और जब बातचीत रुक जाती है तब गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं।
1: दीपिका, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो या फिर देश, अंत में सबको शांति ही चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई भी संघर्ष हमेशा नहीं चलता, अंततः लोग समाधान, स्थिरता और बेहतर भविष्य की तलाश करते ही हैं।
1: और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया इस समझौते को उम्मीद की नजर से देख रही है।
0: दोस्तों, आज के इस विषय का सार यही है कि मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका संवाद और समझदारी है।
1: योग हमें अपने भीतर शांति स्थापित करना सिखाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समझौते हमें बताते हैं कि शांति की आवश्यकता केवल व्यक्ति को ही नहीं, पूरी दुनिया को है।
0: बहुत सुंदर बात कही अनन्या तुमने।
1: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में संवाद और सहयोग का यह सिलसिला और मजबूत होगा तथा दुनिया शांति और स्थिरता की ओर आगे बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि चाहे व्यक्ति का जीवन हो या फिर देशों के बीच संबंध, विकास का रास्ता हमेशा शांति और आपसी समझ से होकर ही गुजरता है।
1: और इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब समय है एक गीत का, जो हमें आत्मबल, सद्भाव और अच्छे विचारों की प्रेरणा देगा।

0: वाह, सचमुच यह गीत हर बार एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भर देता है।
1: बिल्कुल दीपिका। और अब बात करते हैं एक ऐसी प्रतियोगिता की जिसका इंतजार खेल प्रेमी 4 साल तक करते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल आयोजनों में से एक, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की।
1: फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक उत्सव है। जब विश्व कप का रोमांच शुरू होता है तो पूरी दुनिया एक ही धड़कन पर चलती हुई दिखाई देती है।
0: तो आइए जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां, खेल जगत की ताजा गतिविधियां और इस महाकुंभ की खास बातें।
2: नमस्कार, कार्यक्रम युवा उमंग में मैं सोनू अमरवाल आप सभी का जोरदार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे फुटबॉल विश्व कप 2026 पर। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ फुटबॉल विश्व कप का रोमांच वह खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। हर मैच के साथ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, दिग्गज टीमें अपनी ताकत दिखा रही हैं और कई उभरती हुई टीमें बड़े बड़े उलटफेर कर रही हैं। करोड़ों खेल प्रेमियों की निगाहें इस समय फीफा विश्व कप पर टिकी हुई है, जहां पर हर गोल इतिहास रच सकता है, हर मुकाबला किसी टीम के सपनों को नई उड़ान दे सकता है। गेंद के संग सपनों की उड़ान होती है, हर मैदान में जज्बातों की पहचान होती है। विश्व कप में जब देश का परचम लहराता है, तब हर धड़कन में जीत की एक नई जान होती है। तो आइए अब

0: जानते हैं फीफा विश्व कप की महत्वपूर्ण जानकारी और अब तक का सफर। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ का आगाज, जैसा कि आप जानते हैं, 11 जून से आरंभ हो गया है। ये प्रतियोगिता अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, तीन देशों की अगुवाई में खेली जा रही है। अब तक इस विश्व कप का रोमांच अपने चरम उत्कर्ष पर है। पहली मर्तबा 48 टीमों के साथ खेले जा रहे इस विश्व कप में दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों को प्रतिदिन नए रोमांच, नए सितारे और नए रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। प्रतियोगिता के आरंभिक मुकाबलों में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर बेहतरीन शुरुआत की। वहीं दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर जीत दर्ज करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराकर अपनी ताकत दिखाई। वहीं जर्मनी ने कुरासाओ को 7-1 से रौंदकर टीम की सबसे बड़ी जीत अर्जित की। दूसरी तरफ कुछ मुकाबले बेहद रोमांचक रहे, उनमें ब्राजील और मोरक्को के बीच यह मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हुआ। इस्माइल साइबी ने 21वें मिनट में गोल किया। वहीं ब्राजील के लिए वी जूनियर ने 32वें मिनट में गोल दागकर इस मुकाबले को और अधिक रोमांचक और आकर्षक बना दिया। स्पेन व कैप वर्डे, बेल्जियम व मिस्र के दरमियान मुकाबले बहुत ही रोमांचक हुए और ये मुकाबले ड्रॉ पर छूटे। अब तक के प्रदर्शन पर निगाहें डालें तो जर्मनी, स्वीडन, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका जैसी टीमें मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करती हुई दिखाई दे रही हैं। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से मात देकर शानदार अपने अभियान की शुरुआत की थी। विश्व कप के कुछ खास सितारे, अर्जेंटीना के स्टार लियोनल मेसी अपने रिकॉर्ड 6वें विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार हैट्रिक जड़ते हुए इतिहास कायम कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के 41 वर्षीय रोनाल्डो अपना 6वां विश्व कप खेल रहे हैं। इस उम्र में उनका प्रदर्शन बेहद बेमिसाल है और वो 1000 गोल के जादुई आंकड़े के बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ देशों की जंग नहीं बल्कि पीढ़ियों का संगम भी है। एक और 17 वर्षीय मिडफील्डर गिल्बर्टो मोरा जैसे युवा सपनों को उड़ान भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 43 वर्षीय क्रेग गोर्डन और 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनुभव की मिसाल बनकर मैदान में उतर रहे हैं। यह विश्व कप की असली खूबसूरती है, जहां जोश और होश दोनों साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्पेन के युवा सनसनी लम्बाइन यमल विंग पर अपनी गति और ड्रिबलिंग से दुनिया भर के प्रशंसकों को अपना दीवाना बना रहे हैं। एंड्रिक, ब्राजील के इस युवा स्ट्राइकर की ड्रिबलिंग और स्टिक पासिंग ने मैदान पर धमाल मचा दिया। अब नजर डालते हैं अंक तालिका पर। मैक्सिको, साउथ कोरिया 3-3 अंकों के साथ अपने ग्रुप में ऊपरी पायदान पर काबिज है। ग्रुप बी में 2-2 मुकाबलों के 4-4 अंकों के साथ कनाडा और स्विट्जरलैंड टॉप पर हैं। वहीं अपने ग्रुप में स्कॉटलैंड, यूएसए, जर्मनी, स्वीडन, न्यूजीलैंड, उरुग्वे, नॉर्वे, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इंग्लैंड एक मुकाबले के साथ ये अपने अपने ग्रुप में शीर्ष पर बने हुए हैं। विश्व कप का नया प्रारूप काफी रोमांचक सिद्ध हो रहा है। 12 समूह से ऊपरी 2 टीमें और श्रेष्ठ 8 तीसरे स्थान वाली टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी, इसलिए हर अंक बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इस बार का विश्व कप बेहद रंगीन दिखाई दे रहा है और कई मुकाबले रोमांचकता से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, जो कि हर खेल प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर रहे बल्कि सभी खिलाड़ी उनके समक्ष अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये थी विश्व कप 2026 जो कि फुटबॉल का था, और उसमें ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी इस कार्यक्रम में, आपका हमें इंतजार रहेगा।
1: वाह, सचमुच फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी सोनू अमरवाल जी ने।
2: बिल्कुल, खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता बल्कि युवाओं को अनुशासन, मेहनत और टीम भावना भी सिखाता है।
1: और जब युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं तो वे नई ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय की बात करने जा रहे हैं जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा

0: अगला कार्यक्रम, अगला विषय किशोरों में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत है। दीपिका, अक्सर हम समाचारों में या जागरूकता अभियानों में इस विषय के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या यह समस्या सचमुच इतनी बड़ी है?
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और चिंता की बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या युवाओं की भी है।
0: यानी यह केवल किसी एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं है, यह एक वैश्विक चुनौती है और विशेषज्ञ मानते हैं कि जागरूकता ही इसका सबसे प्रभावी समाधान है।
0: वैसे दीपिका, वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो आखिर नशे की लत लत क्यों है?
1: इसका संबंध सीधा हमारे मस्तिष्क से है। हमारे दिमाग में डोपामिन नामक का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई उपलब्धि हासिल करते हैं या खुश होते हैं तो डोपामिन निकलता है और हमें अच्छा महसूस होता है।
0: तो फिर नशीले पदार्थ काम क्या करते हैं?
1: ये दिमाग के इसी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। कुछ नशीले पदार्थ सामान्य से कई गुना अधिक डोपामिन रिलीज कर सकते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग उसी कृत्रिम अनुभव का आदि होने लगता है।
0: यानी फिर खेल, पढ़ाई, दोस्तों के साथ समय बिताना जैसी सामान्य चीजों में भी उतनी खुशी नहीं देती?
1: बिल्कुल, और यही वह स्थिति है जहाँ लत का खतरा बढ़ जाता है।
0: एक बात और बताइए, किशोरों के विशेष रूप से संवेदनशील क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार मानव मस्तिष्क का विकास लगभग 25 वर्ष की उम्र तक चलता रहता है। किशोरावस्था में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से विकसित नहीं होता, जो निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और भविष्य के परिणामों को समझने में मदद करता है।
0: मतलब इस उम्र में जोखिम भरे फैसले लेने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।
1: हाँ, यही कारण है कि साथियों का दबाव, जिज्ञासा या सोशल मीडिया का प्रभाव कई बार युवाओं को गलत दिशा में ले जाता है।
0: और क्या नशे का असर केवल दिमाग तक ही सीमित रहता है?
1: नहीं नहीं, इसका असर पूरे जीवन पर पड़ सकता है। पढ़ाई में ध्यान कम लगना, याददाश्त प्रभावित होना, आत्मविश्वास में कमी आना और परिवार से दूरी बढ़ना जैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
0: यानी ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि भविष्य का भी विषय है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे केवल चिकित्सा नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षिक चुनौती भी मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं?
0: वाह, ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है।
1: और यही न्यूरॉन्स हमारी सोच, सीखने की क्षमता, याददाश्त और रचनात्मकता को संचालित करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक हमेशा कहते हैं कि मस्तिष्क यानी कि दिमाग की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितने की शरीर की।
0: दोस्तों, नशा केवल एक आदत नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारे सपनों को प्रभावित कर सकता है।
1: और विज्ञान हमें यही बताता है कि हमारा मस्तिष्क एक अनमोल धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।
0: अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य बनाइए जो आपको आगे बढ़ाए, पीछे ना खींचे।
1: और याद रखिए, असली ताकत किसी नशे में नहीं बल्कि आत्मविश्वास, ज्ञान और मेहनत में होती है।
0: इसी संदेश के साथ युवा उमंग का आज का अंक यही समाप्त होता है।
1: आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आकाशवाणी हिसार के फेसबुक पेज पर अपने राय, अपने विचार साझा करें।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई सोच और नई उमंग के साथ। धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कृषि संबंधी जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम किसानवाणी। आज का विषय रहेगा कपास की फसल की देखभाल और कीट प्रबंधन।

0: सबसे बड़ी चीज यह है अपन वो नहीं कर सकते, निराई गुड़ाई अपन कर ली, सारा कर लिया, इसमें पानी की ज्यादा जरूरत को नहीं होती। एक कम पानी वाली जो है ये फसल है, इसमें सिर्फ एक बार आपने पानी लगा दिया। एक सबसे बड़ी चीज और है, जब भी आप पानी लगावें तो इतना लगावें कि उसमें नमी बन जाए, ना कि पूरी पड़े कर दे। अगर आपने पानी ज्यादा कर दिया तो उसमें आपकी जो है जड़ खराब होने का खतरा बना रहेगा।
1: हाँ बेबी, और देख सुनीता बेबी, एक तो इसमें और भी ध्यान रखना पड़ेगा अपन है कि कई किसान भाई की है कि बिजाई के समय बीज ज्यादा प्रयोग कर ले हैं
0: जी,
1: जो सुपारिश हो उससे भी ज्यादा कर दे कि कई बार के उखाड़े आ जाए, कई बार के छिदा छिदा बुवाई कम हुआ है, तो क्या है कि किसान भाई थोड़ा सा बीज ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इस अवस्था में बात करा पा तो क्या है कि पौधे है वो लाइन में सीधे के सीधे ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो पानी की बात आपने सिंचाई की बात करी, तो इस समय पर आप उन पौधा की छटाई भी कर सका।
0: मतलब ये आपका कहने का मतलब है कि पहले अपन छटाई कर देंगे, छटाई करने के बाद फिर अपन पानी लगाएंगे, तो जो पौधे ने सही मात्रा में पानी मिल जाएगा, जो उनका पोषक तत्व है वो उसने सही सही मात्रा
1: में भी जगह मिल जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इब जिस तरह हम बात करने लग रहे थे कि अपन निराई गुड़ाई भी कर दी, और इब आप बताओगे कि सबसे बड़ी जो समस्या है वह नर्मा में है। आजकल बहुत कीड़े लगने लग रहे हैं, और खास करके रातेला सफेद मच्छर, जिसने आप सफेद मक्खी जो है उन्हें देखा तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो रही है जो।
1: हाँ,
0: और इसका बड़ी बात है कि नरमा का या रस चूसने वाले कीड़े भी हैं, जिसका रातेला हो गया, सफेद मक्खी होगी, थ्रिप्स हो गया, सबसे ज्यादा नुकसान जो वो अपने फसल में करने लग रहा है। और किसान भाइयों का सलाह है कि आप अपने खेत में रोज एक चक्कर जरूर लगा के आवे, क्योंकि जब आप खेत में जाओगे तो आपने किनारे पे पत्तियां में देखोगे कि कहीं पे कुछ अगर दिख है। इसमें सबसे बड़ा तो बाने बात यह है कि जब आपने देखा कि किनारे पत्ते के जो किनारे मुड़ने लग जाए ना, तो समझ लो कि आपके खेत में जो है रातेला आ गया है। और अगर पत्तियां के नीचे देखा है छोटे छोटे जो बारीक बारीक से मच्छर से मच्छर से हुआ है, अगर आपने वो लग गया तो समझ लेना कि आपका जो है रस चूसने वाली जो ये मक्खी लग गई है आपके। तो इसमें बाण आपने करना की है कि जब आप जाओ अपने खेत की, जब आप पूरे रूप से देखने लग रहे हो, चेक करने लग रहे हो, तो उसमें देखो कि कहीं पे आ रहा है। जब आपने थोड़ा प्रभाव दिखा तो आप एक काम करें, वो पौधे ना पाड़ के
1: और शुरुआती तौर पर
0: हाँ पाड़ के खड्डा खोदो और उसमें दाब दो, ताकि दूसरे पौधे जो है इससे प्रभावित ना हो।
1: हाँ सुनीता बेबी, देखा आपने बहुत अच्छी बात ये बताई कि किसान भाई ने अपने खेत में तो देखो वैसे भी चक्कर मारना चाहिए हर टाइम, आपने देखो डांगर पशु का चारों तरफ घूमा हाँ फिरा हाँ हर टाइम उसकी रखवाली करा, तो उसी तरह ही जिस तरह बच्चा की बात कर लियो उनने भी आप समय समय पर देखभाल करा, तो ये फसल भी इसी तरह बच्चे की तरह ही उनका पालन पोषण करने की जरूरत है कि समय समय पर उसकी निगरानी करनी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और देखो आपने ये रोगों की बात बताई, तो यू नहीं है कि ये रोग लग गए तो किसान भाई सीधा ही आपको रासायनिक जो खाद है स्प्रे उनका प्रयोग करे, आप देसी नुकसान तक भी इनसे निजात पास कहा।
0: बिल्कुल बन, देखो जहर ना छिड़को,
1: हाँ
0: कोशिश जहां तक आपकी रहे
1: कोशिश तो करनी चाहिए कि देसी नुकसान तक केवल इन बीमारी तक निजात पाई जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसमें आप मुख्य बात करें तो नीम का तेल शुरुआती समय में किसान भाई है वो नीम आधारित कीटनाशक जो छिड़काव है वो कर सके है।
0: और जो नीम के तेल की जो मात्रा है वो बता दें वाण की 5 मिलीलीटर जो है वो 1 लीटर पानी में बहुत रहे है, तो उससे अगर हम छिड़काव करांगे तो भी जो ये मक्खी है सफेद मक्खी या रातेला है इन पे अपन निजात पास कर।
1: तो सुनी तभी भी देखे बात तो आप और भी करांगे, और देखो ये भाइयों का मनोरंजन भी करवा दे हाँ, तो सुनवा दे हाँ रागनी
0: जी।
2: अम्बनी मा

ਸੁਨਾਇਆ ਅੰਦੇਸ ਹੋਇਆ ਜਬ ਭੱਠਿਆਰੀ ਕਹੇ ਨੌਕਰ ਲਗੇ ਸਭ ਸੇ ਬੁਰਾ ਦੇਸ ਹੁਆ।

कार्य बताई और बुद्धि बात ईश्वर तुमको टुकड़ा दे बेटा चालो मारी धोबी है तुम्हारा पेटा धोबण है तुम्हारी बात।

0: भैया नहीं, या तो सुनी राग ने और सुनीता बेबी देखो बात करने लग रहे थे आपा कपास की फसल के बारे में। देखो उसमें कई तरह के रोग है वो आ जाए हैं और उनकी समय समय पर अपन देखभाल करना भी बहुत जरूरी हो जाए है। तो उसमें एक रोग है झुलसा रोग, कई बार के है कि कपास की जो पतिया है उस पे काले रंग के धब्बे है वो कोणीय आकार में दिखने लग जाए, धब्बे से मंड जाए, दूसरे के है झुलसा रोग कवे है। तो उसके निजात पान खातर आपने ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम और स्टेप्टो साइक्लिन 200 ग्राम लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव है वो किसान भाइयों ने करना चाहिए। और देखो एक पेराविल्ट नाम का जो रोग है अपना, देखो ये जो कपास की फसल है इब तक की बात करें आप तो देखो कड़ाके की गर्मी पड़न लग रही है।
1: बिल्कुल
0: इस गर्मी में देखो अपना शरीर ही जलन लग रहा है। तो पौधे तो देखो नाजुक सी चीज,
1: बिल्कुल नाजुक है
0: और वे तो खुले इलाके में देखो तो फिर क्या है कि वे मुरझाने लग जाए है। तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक उसमें क्या है कि मुरझाना या सूखनेपन का एक रोग सा आ जाए। तो उसने क्या है पेराविल्ट रोग का नाम तो आप पुकारा है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत किसान भाई ने अपने खेत में लगा है तो उसमें पौधों की जड़ों में 1% कोबाल्ट क्लोराइड और यूरिया और पोटास का घोल बनाकर है वो उसमें डाल देना चाहिए
1: जी। और एक बात और बता दें कि जो मैं बात कर रही थी गुलाबी सुंडी की,
0: हाँ
1: तो यह जो गुलाबी सुंडी है वह नर्मदा खातर सबसे बड़ा दुश्मन है।
0: अच्छा
1: तो अब इस तरह जिस तरह कहा कि इसकी दिक्कत यह है कि यह सुंडी जो है ना टिंडे के भीतर घुस गई है।
0: अच्छा बेबी बेरा कौन पट्टा फिर
1: इसका आपने न्यू बेरा कौन पट्टा कि वह सुंडी इसमें लग रही है।
0: तो फिर बेबी उसका किस तरह आपने समाधान करना पड़ेगा?
1: उसका मन बेरा के ऊपर पटेगा। सबसे तो बड़ी चीज है कि आपने एक तो टिंडा तोड़ के देखना पड़ेगा।
0: अच्छा
1: कि उसके अंदर या है कि नहीं है, और या फिर फूल जो है फूल के अंदर मिलेगा तो वो आपने पहले तोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने
0: तोड़ के फिर उसने
1: फोड़ के देखना पड़ेगा। अगर आपने टिंडे फोड़ के नहीं देखे ना है, अपन ये सोचा ये सुथरे दिखे सही है बढ़िया है,
0: हाँ
1: तो उसका अपन बेरा उस टाइम पटेगा जिस टाइम आप चुगाई करेंगे। क्योंकि वो टिंडे आने तो वो तो भीतर भीतर खोखड़ा कर देगी और अपना आराम तो उसमें।
0: तो बेबी फिर आप वो जिक्र तो ना करो जिस तरह पर चुगाई कराया करा उस टाइम जो काने काने से
1: हाँ,
0: उसकी बात करो।
1: बिल्कुल वो काने

0: कहानी को नहीं, उनमें तो ये पहले तो वो कहानी होया करती।
1: अच्छा,
0: लेकिन ये कहानी को नहीं, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक काला बुरादा निकला
1: है।
0: तो यानी अपनी फसल ने वो बहुत ज्यादा नुकसान जो

0: इसका 40-45 दिन की जब अपनी फसल हो जाए है ना, तो इसमें अपन एक काम करें, किला में 5-6 बार घूम घाम के अपन ने देख लिया, जब देखा तो एक ही यहाँ होगी टिकिया की तरिया, जैसे
1: ओके
0: अपने साबुन की टिक्की हो ना,
1: हाँ
0: इस तरह ये
1: जी
0: छोटी छोटी टिक्की हो, इन अपन लगा देंगे। इसने आप मतलब जिस तरह देखेंगे कि कुएं में 5-6 जगह अपन ये लगा दी, इसका काम क्या रहेगा कि जब ये टिकिया अपन लगा दी तो इसकी शोरूम तो सारे जो कीट है,
1: हाँ बेबी
0: जितने मच्छर हैं या जो भी बीमारी है, वे सारे के सारे बीमारी के जो कीटाणु हैं वो सारे उस टिकिया पर जाके
1: चिपक
0: चिपक
1: जाए।
0: जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। इसी तरह एक जिस तरह टिक्का या अपन बताए कि या टिकिया साबुन की टिकिया तरह, इसी तरह एक पीला कागज आवे है
1: अच्छा बेबी
0: जिसके ऊपर कीटनाशक लगे हुआ है, वो अपन अगर लगाओगे ना कहीं भी लगाओगे जिस तरह फसलों में, उसमें आप क्या करें पौधे के ऊपर भी टांग सकें, ये जरूरी को नहीं कि अपन
1: चिट्सी
0: पौधा,
1: बना के
0: हाँ वो चिट्सी जरा आप टांगेंगे ना तो उसमें सारे तो जितने भी मच्छर हैं या जितने कीटाणु हैं, जितने भी अपनी फसल ने नुकसान करने वाले कीट हैं जितने, वो सारे कीट उस पर चिपक जाएंगे और मर जाएंगे। ये देखो ना तो अपने इसमें कोई जहर घेरना, सबसे तो बड़ी चीज की है, सबसे तो बड़ा फायदा यह कि अपना पर्यावरण भी सुरक्षित,
1: हाँ बेबी
0: ना अपना जहर छिड़कना अपना ने, क्योंकि वो जहर अपन छिड़कांगे तो अपने सांस के जरिए भी, अपने हाथों के जरिए भी, अपने शरीर पर तो लगा ही है,
1: हाँ बेबी
0: तो उससे एक बहुत बड़ा इसमें अपना बचाव कर सका। हाँ, और एक आ गया कि जब फूल और टिंडे की जांच करनी, जिस तरह मैं आपने पहले अपन बात करा था कि फोड़ फोड़ के अपने 100, 200, 150 जितने भी जगह सारे किले में अगर अपन 100 टिंडे तोड़ लिए और वो फोड़ फोड़ के अपन देखने पड़ेंगे कि कहीं उनके अंदर यह कीड़ी सूंडी घुस तो नहीं गई है। उसके बाद दवाई, दवाई अगर आप कोई भी छिड़कन लग रहे हो ना, तो उसका पहले आपने आपके जो एडीओ है
1: हाँ
0: उन
1: बेबी
0: पर आपने पहले जांच करवानी पड़ेगी, उन पर आपने पूछना पड़ेगा। जब तक अपन किसी भी दवाई का छिड़काव आपने जब करना चाहिए, जब आपने डॉक्टर बता दें कि यह जरूरी है आपके इसमें छिड़कना,
1: यानी
0: बिल्कुल।
1: सिफारिश के हिसाब से ही करना चाहिए।
0: और उसके साथ है साफ सफाई, साफ सफाई का मतलब ये है कि जब आप अगली बार कोई भी फसल आप जब बोन लग रहे हो, तो जितनी भी अपनी बछंटी थी, अब आके रहा कि बछंटी अपने
1: एक कोने में लगा
0: एक
1: दिया
0: कोने में लगा दिया, वो ना करें कि अगर इस बीमारी से प्रभावित अगर आपका खेत हो लिया है तो उन बछंटिया ने भी आप जमा खत्म ही कर दो। अगर आपने ले जानी है बारन खातर घर ले जानी है तो घर ले जाओ, लेकिन खेत में ना छोड़ो, क्योंकि ये कहें कि सूखने के बाद भी जब आपकी फसल सूख गई, आपने काट ली सारा कर दिया, तो भी उस लकड़ी के अंदर ही इसके जो है जीवाणु बचे रह जाए हैं
1: एक बात और भी है सुनीता बेबे। देखो
0: के।
1: आपने कहा कि लकड़ी घरा ले आओ, चलो ले आवा। हाँ देखो किसान है,
0: बिल्कुल
1: खेता
0: बिल्कुल
1: में रहा। हाँ फिर देवी घर में जो ईंधन है इसमें ना सरे भी को नहीं। लेकिन किसान भाई जब वो लकड़ी अपने खेत पे उठा ले है तो उसके नीचे भी बुरादा सा बहुत ज्यादा मात्रा में बच जाए। अगर उस बुरादे से का यानी जो पत्ते से बचे अगर उसका भी आप अच्छे तरीके से समाधान करा यानी खड्डा खोद के उसने दबा दिया तो भी आप इस बीमारी तक निजात पास कहा।
0: बिल्कुल। तो देखो सबसे तो बड़ा विधम अपन एक एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा अगर अपने फसल जो अपनी बढ़िया लेनी है, तो क्योंकि जब तक अपना दवाई का अपन ये सोचा ना भी जहर जहर घेरे जावा, वो चीज भी एक समय तक ही प्रभावित रहेगी। जितनी भी दवाइयों का अपन छिड़काव करेंगे, वो दवाइयों का छिड़काव जब हम करने लग रहे हैं तो वो टिंडे भी उसके जो है ना आदि हो जाएंगे, जो
1: हाँ
0: जितने भी कीटाणु हैं जीवाणु हैं वो सारे के सारे उसके आदि हो जाएंगे, तो वो मरे को नहीं, तो इसका मतलब उनका प्रभाव खत्म हो गया। तो जब आप या तो हम देसी नुस्खे अपना, देसी नुस्खे अपनाने के बाद भी अगर काम नहीं करने लग रहे हैं तो हम दवाई छिड़का, दवाई छिड़कांगे तो डॉक्टर से पता करांगे कि डॉक्टर जब जो जानकारी देगा, कई भाई के एक रहे हैं
1: देखा
0: तने
1: देखी में कर ले हैं।
0: बिल्कुल तने दवाई बता दी मैंने दवाई बता दी सारिया ने मिला के एक ड्राम में छिड़क दे, उसका सारा प्रभाव जो है वो खत्म।
1: हाँ बेबी तो सुनीता बेबी देखो एक बात मैं भी बता दूं भाई है ना
0: बिल्कुल
1: कि देखो दवाई का ये परहेज आपने जो बताए हैं इनका प्रयोग तो किसान भाई करे ही करे लेकिन साथ में अगर किसान भाई फसल चक्कर अपनाओगा तो भी काफी मात्रा में फायदा ले पाओगा। क्योंकि देखो लगातार आप एक ही भूमि में कपास ही कपास की बुवाई करने लग रहे हैं तो उसकी उर्वरता जो शक्ति है वो कम हो जाए है। अगर
0: बिल्कुल
1: आप एक साल में दूसरे मतलब कपास बीजने की बजाय अगर उसमें दलहनी फसलों का बुवाई कर दें तो के है उसमें अच्छी मात्रा में के है फसल चक्र के कारण उर्वरता

0: शक्ति काफी मात्रा में बढ़ जाए, तो फसल चक्कर भी इसमें बहुत ज्यादा भूमिका निभावे है।
1: बिल्कुल मैडम, आपने जो बात कही बिल्कुल सोलह आने की बात कही कि देखो अपने सारे काम सोच समझ के करने पड़ेंगे, लेकिन नरमा जो है अपन बात करने लगी थी, नरमा जो अपनी है वह एक सोने की फसल है, यानी सोना बनाने खातर तो हमने खेत में पसीना अपन खूब बहाया है। खेत में पसीना जब अपन बहाने लग रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तो अपन जागरूक बनना पड़ेगा, क्योंकि रोज खेत में जाना भी पड़ेगा, उनके टिंडे भी देखने पड़ेंगे, पत्ते भी उल्ट पुलट करके देखने पड़ेंगे।
0: देखो सुनीता बेबे, खेती करी है तो देखो जाना तो पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात और भी है उसमें, अपन सारा खर्चे का लेखा जोखा भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो वही आएगा अपना, जो बचत कितनी होगी उसका, अगर अपना शुरू से लेकर जो फसल अपने घर आवे जब तक का अगर लेखा जोखा आप लिख के तैयार करांगे भी अपना कितनी लागत हुई कितनी अपने आमदनी हुई, तो ये भी काम अपने किसान भाई ने करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और जीते तो कह रहे हैं अपने बुढ़े बुजुर्ग के, कह करते बोला खेती खसमा सेती,
0: हाँ बेबी,
1: तो जितना हम अपनी मेहनत करांगे तभी जाके अपना वो मिलेगा, न्यू को नहीं भी अपन सोचे सीरी ने कहा है वो कर देगा, लेकिन साथ में आपने भी खड़ा होना पड़ेगा, कि एक मजदूरा का सहारा आपने खेती नहीं होगी, आपने बराबर में खड़ा रहना पड़ेगा।
0: देखो सुनीता बेबी, खेती बाड़ी के बारे में बात तो अपनी बहुत सारी ही, लेकिन अपनी घड़ी भी सारा करण लग रही है, ये मारे गांव का समय होने लग रहा है, तो भैया तल्ले वहां इजाजत।
1: तो छोटे से अंतराल के बाद हमारे गांव में आपते हैं, फिर मिलांगे।

0: मेहमान एक बार फिर अपने बड़ भैया का स्वागत करा हमारे गांव में।
1: हाँ बेबे, और भैया का स्वागत आप सुखा नहीं करांगे, मनोरंजन भी करवा दे। हाँ
0: बिल्कुल,
1: तो सुनो यार रागनी।
2: किसने महदी बड़ा

खड़िए केवाड़ी जड़िए शीशम के कुंदी लगड़ी ना ताड़ा फर्श गिलारी संग मरमर के दिखे ब्योत निराड़ा सोने का पानी ओया छाट पे धन माया का गाड़ा सोने का पानी देखिए दरी तस्वीर बेद मंत्र की।

的姑怎么哭家当然今天我一个车里干嘛的呀们再也给他来过来把锁家

मैं तेरे मुर्गाई एक आधी जगे कंठारे पे हरे हरे रंग की काई गुरुमान संगी बता गए जो धर्म कर्म की राही लक्ष्मी चंदे जिन्हें समझिया उन

0: भैया ने या तो सुनी राग ने, और देखो सुनीता बेबी हमारे गांव की बात आ रही है तो देखो मौसम का भी रुझान थोड़ा सा अच्छा सा हो रहा है, बारिश का भी हो रहा है, और देखो थोड़ा सा ठंडी भी आजकल हो रही है।
1: ना बेबे,
0: कोनी हो
1: ठंडी
0: रही
1: तक ना, कसूती गर्मी पड़ा ही, पसीना में
0: देख
1: भीज
0: बेबे
1: के।
0: यही कुआना चावी में पसीना में भिजे आ रहे हैं। तो बात करा देखो ये आगे आने वाले महीने की, सावन के महीने की बात करा, या पा देखो मानसून की बात करा, तो उसका जिक्र आपा इस कार्यक्रम में करा है
1: बेटा
0: कि।
1: मोबाणा, आपने एक बात बताऊं,
0: हाँ बतावे बे।
1: इबे तो चला जेठ, और फिर आओगा साढ़, और फिर आओगा
0: देख बेबे
1: सावन।
0: जेठ और साढ़ तो आवेगी, कड़कती गर्मी भी एक भी, लेकिन कई बार की है कि भगवान ने भी संदेश सा मिल जाए कई
1: तने
0: बार।
1: तने न लागे रोज बरसत ही सामने आओगे,
0: देखो
1: सामने
0: बेबे
1: को नहीं, एक साथ भी आओगे बीच में।
0: देख बेबे आज तो वही जय है कि जेठ साढ़ साढ़ में कई बार की है कि राम जाता जाता साढ़ कर्जे की मिनकी में।
1: ना इसको तो
0: देखो
1: जेठ लाग दे, इसको बेरा इतना
0: हाँ
1: पटन
0: तो
1: कौन दिया, जेठ
0: हाँ
1: में
0: जदि
1: पूरा
0: तो बेबे
1: बरसे।
0: आज तो वही जय की देखो बरसन की। लेकिन
1: बिल्कुल
0: आप बात करा कि ये बरसात बरसात तो ठीक है, लेकिन आपने बारिश के पानी का प्रबंधन भी करना पड़ेगा। देखो सावण के महीने में पिछली बार देखो बारिश का पानी अच्छा खासा आ गया था,
1: बिल्कुल
0: तो उसका प्रबंधन आपने पहले तो ही करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। एक चीज सबसे बढ़िया है कि अब मैं यूं सोचा कि मैं नहीं, मी बरसे का जीत देख ले,
0: हाँ
1: और इनका के बेरा इतना बरसे का को नहीं। सबसे पहला तो देखो, आप जब भी नू लगे कि हाँ बारिश ज्यादा होगी या करेगी, अपन संभालने पड़ेंगे अपने जो है काट दो बछड़ो,
0: हाँ बेबी
1: ठीक है। पशुधन में सबसे पहले खेत खलियान, तो अपन जब अपने पशुधन ने संभाला, पशुधन के बारे में जब संभालन की बात यह होगी, जो अपनी ठाण है गुमान है अपन हमें साफ रखनी पड़ेगी, और अपन उन खातर सूखे का भी जो है सबसे ज्यादा इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ये सोचा भी बेत पड़ा है खेत में, और फिर जी करेगा जिद ले आओगे तो देखो बारिश में गिल्ला होगा, गिल्ला होगा तो फिर अपना जो पशुधन फिर आला में बैठेगा।
0: हाँ बेबी। और देखो खेत में तली आओगे सुनीता बेबी, यह बात आपने कही, तो कई बार के खेत में भी रख लिया, लेकिन खेत में भी उसका खाने का प्रबंधन अच्छे तरह करना पड़ेगा, तिरपाल डाल के, या फिर आपा देखो उसके चारों तरफ आपा कई बार के है कोई
1: प्लास्टिक के कागज,
0: प्लास्टिक कागज लगा दें, तो यानी उसका उचित प्रबंधन जरूरी है।
1: क्योंकि कई बार जिस तरह आप देखा तो पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो वह गल जाएगी, गलगी तो वह पहले बात तो पशु खावे को नहीं,
0: हाँ
1: और
0: बेबी
1: जब खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। तो ऐसा काम ना करें आप, देखो सावधानी अपन है हर जगह बरतनी बरतनी पड़ेगी। दूसरा एक और चीज भी है कि अपन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो उसका अपन गणा बड़ा जो है नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। तो इसलिए भैया तय हाथ जोड़ के सब तक गुजारिश है कि थोड़ी सी भी लापरवाही आप ना बरतें, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी लापरवाही बरती तो वह गणी आफत आ जाएगी।
0: हाँ बेबी
1: तो इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो अपने जितने भी गांव में नाली हैं, नाले हैं, उनने साफ करवा ले, क्योंकि अपने बेरा है कि मौसम मानसून अपना आ गया है, अरे कदे भी बूंद घुस गए,
0: आस्ते
1: तो जब अपने न्यूबेरा है कि बारिश आने वाली है, मी आने वाला है, तो गामा की गलियां ने साफ कर ले, जितने भी अपने नाली हैं, जिन गामा में सीवर आ रहे हैं, अधिकतर गामा में आजकल आपने देखा कि सीवर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सीवरा की भी सफाई जरूरी है, अपने गामा की गलियां की भी सफाई जरूरी है। तो इस तरीके से अपनी सफाई करवा लें कि अगर कितना ही पानी बरस जो सारा का सारा जोड़ में जाएगा।
0: हाँ बेबी। लेकिन बेबे जोड़ में जाने से पहले जोड़ की सफाई भी जरूरी है, क्योंकि देखो कादा कीचड़ उसमें जमा हो जाए, ई देखो आंधी तूफान कितना चालन ला रहे, तो उसमें कितना कचरा इकट्ठा हो रहा है, और उसकी सफाई अगर कर लेंगे तो अपना पशुधन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसमें आप हर टाइम दोनों टाइम ले जावा पशुआ ने, तो ई मौका है।

0: मन सुनाण ता पहला किसान भाई, जोड़ा की बात करी, नदी नाला की बात करी, पशुधन से संबंधित कोई भी चीज हो, जैसे उसका रहन का स्थान है, उसका अच्छे तरीके से बंदोबस्त करना, क्योंकि वे भी देख मौसम मानसून का आवे नहीं तो 6-6, 7-7 दिन जड़ी लाग जाए, और उस मौसम में के कि पशुधन ने खतरा सा महसूस होने लग जाए, क्योंकि 6-6 दिन आराम सूरज कौन काट है, तो उन्होंने रखण खातर अच्छा उसका बंदोबस्त तो पहले तय अपन करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बताओ भाणा, आपने तो मेरी जो दुख दी रग पा दर दिया,
0: अच्छा बेबे,
1: क्योंकि पहले तो देखो गामा मैं की करया करती, जिस तरह भी मानसून आया करता तो उससे पहले सारे लोग कट्ठे होके नाली नाले सारे साफ कर लिया करते, और सफाई करके पहले तो जोड़ा की, जिस तरह जेठ में जोड़ सूख जाते तो जोड़ा की सफाई कर दे, उन और गहरा खोदया करते,
0: हाँ बेबे, माटी काट दें,
1: माटी काटया करते, और सारे गांव का उसमें सहयोग होया करता, सारे के सारे की आज इस घर के गए हैं, अगले दिन दो दिन और जाओगे, इस तरह करके मतलब बहुत प्यार तर सारी तैयारी करके रखा करते।
0: हाँ बेबे,
1: लेकिन आजकल के है कि हम हो गए सारे के सारे सरकार पर आश्रित, सरकार
0: हाँ
1: पे क्यों करोगे, आपने सोचा ही हो कि आप पे सरकार करवाओगी,
0: हाँ
1: सरपंच आप पे करवाओगा, सरपंच पी से लेन लग रहा है, तो वो चीज अपने जिस तरह मन ने मेरी बात तेरे पर थोप दी, तन्ने मेरे पर थोप दी, तो इस बात ने लेके नहीं कारण की हो गया कि तन्ने कराया मन ने कराया, इसमें लापरवाही अपन बरते थे, और उस लापरवाही का खामियाजा जो आपने फिर आगे जाके
0: भुगतना
1: भुगतना
0: पड़े।
1: पड़ा है। तो भाई देखो उन चीजें छोड़ के अगर आप अपनी नालियां ना साफ करवा लेंगे, और गांव का जो गोबर कूड़ा गंदा पानी गलियां में जो अपना बरजेगा वो नुकसान करेगा, बीमारी बढ़ाओगा, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी इतनी फैल जाएंगी कि अपने फिर काबू मान का कोई कुछ नहीं। तो गांव में जो पानी है वो बाहर निकलना जरूरी है, और सब तो बड़ी बात यह है कि गांव का जो गंदा पानी है वो पहले जोड़ में जाओगा,
0: हाँ बेबी,
1: क्योंकि जोड़ में आजकल जोड़े रह रहे हैं, जोड़ा में जाओगे तो जोड़ा की भी साफ सफाई अगर आप कर लोगे ना तो वो बहुत सही रहेगा, आपका गांव का बचाव हो जाएगा।
0: तो सुनीता बीबी देखो, आपने पशुधन का तो कर लिया, लेकिन सागे सागे आपने रहने ने भी जगह चाहिए कि, तो आपने अपने मकान ना के भी जो कच्चे घर है, कई घर में देखो अपनी जो छत है वो कच्ची है, देखो सबका तो कोठियां भी कोनी, सबका पक्के भी कोनी, हर तरह के लोग गांव में भी रहे, शहर में भी रहे। हाँ बीबी,
1: आपने बात करी पक्के मकाना की, जरूरी को नहीं कि अपने कच्चे मकाना का ध्यान रखना, अपने पक्के का भी रखना पड़ेगा, अपने सोचो छत पे कितना अड़ंगा, कोई भी खराब हुई चीज फेंक दो छत पे,
0: हाँ
1: इनमें
0: बीबी,
1: भी होया हो फेंक दो छत पे, अब संभाला तो हाँ को नहीं, बारिश होगी बारिश होने दे पानी रुकेगा, क्योंकि नाली में गंद तो जाओ जाओ,
0: हाँ बीबी,
1: वो गंद गया नाली रुकी, नाली रुकी तो पक्के मकान भी बैठ जाएंगे, तो ध्यान तो आपने कच्चे पक्के तो
0: दोनों बात
1: रखना
0: करनी पड़ेगी
1: पड़ेगा।
0: बेबे। और देखो बेबे, कई बार क्या हुआ कि आपा जो फालतू सामान है छत पर रखे हो, जिस तरह कूलर हो गया यूज कर लिया मानसून के बाद में, सोचा ये टूटा फूटा ये ऊपर रखे हो, तो क्या उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, उसमें मच्छर पैदा हो जाए, तो देखो
1: बिल्कुल
0: साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, और मानसून में तो खासकर विशेष कर जरूरी है, क्योंकि देखो ये बीमारी का सिलसिला सा शुरू हो जाए इस समय पर।
1: और इसमें सबसे तो बड़ी चीज एक और, अपना भी ठीक है पक्के भी चौहे तो हैं, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं होती जितने अपने जो बण भाई हैं कच्चे घर में रहे हैं उनके चौहे हैं। तो भाई जब आपने यूं पता है कि मानसून आन लग रहा है यानी बारिश का मौसम जब अपना आ गया है, तो आप अपने अच्छी तरह अपने छात जाके जो जिनकी कड़ियां की छात है वह भी अपने जाके अपने कड़ियां की छात ने एक बार संभाल लें, देख लें कि कहीं पे भी टूट फूट ना हो या
0: टूट
1: त्रेड
0: फूट
1: ना आ
0: नहीं
1: रही है।
0: बेबे, देखे तिरपाल गेड़ के मिट्टी गेड़न का काम भी कच्चे घर में करे जावे, तो मानसून तो पहले भाई ने अपनी छात भी संभाल लेनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: देखो मिट्टी गेड़ दे तो अच्छा काम है वो, चल जाए।
1: बिल्कुल देखो अपनी छात ने सुथरी डाल रखेंगे तो टपकन ते भी बचा रहेगा, कड़ी भी बची रहेगी, लंबा टाइम निकाल देंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी ना बरती, ऐ सावधानी तो जिसने वो कह कर कि थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
0: हाँ बेबी, और देखो अपने रहने के साथ साथ सुनीता बेबी देखो, आप बात कर लिया जो अपना फसल है वो
1: बिल्कुल
0: आप गरा गेड़ा, हाँ देखो कट्ठा स्टोर बनावा, हाँ तो उसमें भी आप देख रख रखाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मौसम ऐसा ही है मानसून में नमी ज्यादा हो जाए वातावरण में, और क्या की अनाज है वो खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाए, तो हम तो किसान भाइयों ने यही कहेंगे कि पहला अपने जो अनाज का भंडारण करा, हाँ उस जगह ने अच्छी तरह से उसकी रिपेयरिंग कर ले, मरम्मत कर ले, और जरूरत हो तो देखो अनाज को उचित स्थान पर ही रखें, ताकि मानसून के समय उसमें किसी प्रकार की कोई, जिस तरह चने
1: कोशिश
0: की बात
1: करेंगे।
0: करा,
1: हाँ
0: चने की बात करा तो देखो कई बार के गुण

0: जो है आप इसकी मूंग की बात करा या फिर गेहूं की बात ही करो, देखो जो आमतौर पर आप हरदम यूज करा हाँ, तो उसमें भी आप रख रखाव में विशेष सावधानी आपने बरतनी पड़े।
1: भाई देखो कोशिश करो कि नमी ना हो।
0: हाँ भाई
1: तो अब बात विदम बने एक और कर लिया कि जब हम बात करने लग रहे हैं तो गांव में आगे तो पशुधन तो अपने देखना ही देखना
0: हाँ
1: पड़ेगा।
0: भाई
1: और पशुधन का एक सबसे बड़ा चीज है कि जो अपना गांव है वो अपने रीढ़ की हड्डी जो अपने पशुधन है। और मानसून में दो तीन बात तो अपने बहुत ज्यादा ध्यान रखनी
0: वो
1: पड़ेगी।
0: की है स्मिता में।
1: सबसे पहला टीकाकरण।
0: हाँ भाई
1: मानसून आने से पहला पशु अस्पताल में जाके गलघोंटू, खुरपका और मुंहपका
0: हाँ भाई
1: इनके टीके जरूर लगवा लें, क्योंकि नी के पानी में वायरस बहुत ज्यादा जल्दी से फैले हैं। तो जितना भी ज्यादा वायरस फैलेगा वो अपने पशुओं में जो है वो नुकसान करेगा। तो आप कोशिश करें कि इस मौसम में अपने पशुओं के ये तीनों टीके जरूर लगवा लें। उसके बाद तुड़ी के कूप की डकाई, जिस तरह आप बात करने लग रहे थे कि जब आपने तुड़ी है अपने खेत में तो उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि या तो तिरपाल या
0: हाँ
1: फिर प्लास्टिक का, और जय हो उसके तो कोशिश करें कि तूड़ी में आप घर लेके आ सको, आपका जगह है तो उसने छत के नीचे रखें तो बढ़िया है। क्योंकि अगर अपने खेत में है तो खेत में देखो नी गणा बरस गया तो पानी नीचे नीचे जाओ जाओगा, और
0: हाँ
1: पानी चले गया तो वह तूड़ी खराब होगी।
0: तो उसने कभी भी देखो ही पापा भाइयों का थोड़ा सा मनोरंजन भी करवा दिया हाँ, तो सुनो या राग नहीं
2: आया उसका ख्याल करिए हो, घर उस स्वर को खाके नमकी

पशु पक्षी में मानुष्योनि ए प्रधान, मनुष्यों में भी वही श्रेष्ठ है भक्ति करता जो इंसान, भक्तों में भी वही श्रेष्ठ है

सत्संग कर प्यारे छुट जा तेरा।

माल खजाने साथ नहीं दे, माई जिसने हो जा नारी बनी, कुतुम कबीला सगे संबंधी गोती नदी सजन मरंदी, ये समय स्वार्थ के सची माया मद में रहते अंधी। केसरानंद

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
5: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
4: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
5: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
4: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?

0: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक PLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, सिंगला क्लिक मत करना।
4: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे, तेरी समझदारी का फल।
5: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
0: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
6: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
0: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
6: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
0: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
7: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
8: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही।

0: युवाओं को लेकर कहा,
1: दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है।
0: दोस्तों, देश की उन्नति में श्रमिकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। जहां श्रमिकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां तरक्की में तेजी देखी जाती है। हिसार में श्रमिकों और किसानों के लिए मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है। इस भोजनालय का उद्घाटन करते हुए हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा,
2: किसी भी 5-स्टार होटल से भी बहुत बढ़िया खाना है, बहुत टेस्टी हलवा हमारी बहनों ने बनाया हुआ है, पनीर की सब्जी है, दाल है, चावल है और ये मात्र 10 रुपए के अंदर हमारे जो किसान भाई है, जो हमारे श्रमिक भाई है, उनके लिए व्यवस्था की गई है और ये सब्सिडी रेट पे होता है। ये हमारी जो बहने हैं ये 10 रुपए के अंदर यहाँ श्रम करती है, बाकी पैसे इनको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और ये सरकार ने व्यवस्था करने का काम किया है हमारे किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, जो किसान अपने खेत से सब्जियां

करके आता था, लेकर के आता, वो लेट हो जाए, या हमारे जो श्रमिक भाई है जो रात दिन मेहनत करते हैं और ये जो देश का विकास हो रहा है उसमें अहम योगदान हमारे श्रमिकों का है, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है कि नाम मात्र पैसे के अंदर भरपेट भोजन अपना और पौष्टिक भोजन, अच्छा भोजन जो है वो करने का काम कर सके। आज हमने यहाँ भोजन किया, वास्तव के अंदर लस्सी भी, हलवा भी, पनीर की सब्जियां, रोटी बहुत अच्छी हमारे बनाई हुई है। बहुत सी नई योजनाएं श्रमिकों के लिए है, चाहे वो बीमा की बात हो, चाहे 60 साल का कोई भी श्रमिक हो जाता है उसको केंद्र सरकार की तरफ से भी 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। और हमारे यहाँ जैसे आपको पता ही है कि आज हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, ये पूरे देश में जो है सर्वाधिक है। और भी बहुत सी योजनाएं हमारे जो श्रमिक भाई है उनके लिए है, चाहे वो बेटी की शादी के अंदर कन्यादान की हो, चाहे मकान बनाने की बात हो, और चाहे हमने अभी जो योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना की है जिसमें पूरे देश भर के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाने तक के देने का काम किया है। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कोई भी हमारा देश के अंदर बिना छत के ना रहे, और हरियाणा सरकार ने भी जो गांव है वहां 100 गज के प्लाट और जो महाग्राम है उसमें 50 गज के 30 गज के प्लाट जो है शहर के अंदर भी और उनको दे करके और उनके पीएम आवास योजना के तहत उनका मकान बना करके दिए जाते हैं।

0: आइए अब आपको लिए चलते हैं आगामी मौसम की जानकारी के लिए हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग में, जहां कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एमएल खिचड़ बता रहे हैं आगामी मौसम का हाल।
1: पूरे महीने की बात करें जून की, तो भी लगातार 6 और 7 पश्चिम विक्षोभ अपने हरियाणा पर भी प्रभाव डाल रहा है, जिसमें कुछ एक्टिव रहे, कुछ थोड़ा कमजोर रहे, परंतु लगातार बारिश हो रही है, बीच बीच में बारिश हो रही है। तो अभी जो पश्चिम विक्षोभ गया है, उससे भी बारिश पिछले 2 दिनों में हुई थी, परंतु अभी आगे भी ये 2 पश्चिम विक्षोभ लगातार आ रहे हैं। एक 21 जून को फिर पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ेगा, जिसका प्रभाव 21 जून की रात्रि और 22 जून को भी रहने की संभावना है। तो ये लगातार अभी अगले 4 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा, बीच बीच में गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। यदि हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कम दबाव का क्षेत्र बनता है, और हवाएं अधिक दबाव से कम दबाव, जितनी नमी होगी वहाँ अधिक दबाव बनता है, तो अधिक दबाव से कम दबाव का क्षेत्र बनता है। परंतु इस साल जो मौसम में बदलाव दिख रहे हैं कि यहाँ बारिश बढ़ने के कारण मौसम में नमी ज्यादा है, तो यहाँ कम दबाव का क्षेत्र नहीं बन रहा, तो इसके कारण नमी वाली हवाएं भी, जो मानसूनी हवाएं हैं, वो हमारे हरियाणा तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी मानसून कमजोर है, तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो महाराष्ट्र में एंट्री की है, परंतु उसके बाद में आगे नहीं बढ़ पा रही है। और अभी IMD जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग नोडल एजेंसी है, उन्होंने भी यह कहा है कि भी अगले 4-5 दिनों तक मानसूनी हवाएं महाराष्ट्र में प्रवेश करने की संभावना है। तो क्योंकि वो अभी भी 8 से 10 दिन लेट चल रहा है मानसून, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मानसूनी हवाएं हमारी तरफ बढ़ेगी, तभी हम कह पाएंगे कि मानसून हरियाणा में कब तक पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है तो वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ पा रहा, उधर से नमी वाली हवाएं हमारी नहीं आ रही। IMD के जो प्री मानसून सीजन होता है वो अप्रैल मई होता है, जून से मानसून सीजन बन जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो जून सीजन बनाए हैं, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 4 महीने मानसून पीरियड होता है, मानसून सीजन कहते हैं इसे। और जून में मानसूनी हवाएं आनी शुरू हो जाती है, 20 जून के आसपास जो मानसूनी हवाएं हैं वो हरियाणा में आने लग जाती है, परंतु इस बार उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी मानसूनी हवाएं आ पाएगी, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ 22 तक इफेक्ट करेंगे और उसके बाद में ही कोई मानसूनी हवाएं, जैसे आगे बढ़ेगा मानसून, क्यों अभी तो रुका हुआ है तेलंगाना और आंध्रा के आसपास रुका हुआ है मानसून, और उसके आगे बढ़ेगा और वहां से मानसूनी हवाएं हमारी तरफ आ रही, तभी हम कह पाएंगे ये मानसूनी हवाओं के कारण जो मानसून आने से पहले जो बारिश होती है वो प्री मानसून बारिश होती है। किसान भाई, इस ये बारिश सभी फसलों के लिए फायदेमंद, पहले वाली बारिश भी फायदेमंद रही, तो अभी आगे इसको नमी को संचित करें, क्योंकि अभी धान शुरू हो जाएगा, धान की रोपाई, और मैं धान के किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आगे जैसे एलनीनो की कंडीशन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है आशंका कि एलनीनो का बढ़ना है, परंतु इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव है, तो बारिश की आगे कमी को देखते हुए यदि मानसून कितना रह पाएगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, परंतु किसान भाई यदि पानी अवेलेबल हो, सिचुएशन इरिगेशन अवेलेबल हो, तभी धान लगाए।

0: आइए अब आपको मिलवाते हैं आकाशवाणी हिसार के एक ऐसे नियमित श्रोता से जो बचपन से ही आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप अपने भाई से प्रेरित होकर रेडियो के मुरीद बने और आज भी ये रेडियो की मोहब्बत उसी तरह से जमा है। आप हैं सुनाम पंजाब से आकाशवाणी हिसार के नियमित श्रोता श्री अनिल शर्मा।
1: जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना
2: जी,
1: तो जैसे हमें छुट्टी होती स्कूल से तो हम मैं आते ही अपने रेडियो ऑन करना और उस टाइम क्या के चलता था रेडियो आकाशवाणी दिल्ली
2: जी,
1: तो वहां मतलब सुनते थे, मतलब साथ में गुनगुनाते भी थे, बहुत शौक था हमें। तो जैसे जैसे हमें जैसे हम सुनते रहे और स्टेशन में चलते रहे, आज मैं क्या हिसार से भी जुड़ा हूँ, आकाशवाणी हिसार से मेरा बहुत अच्छा बढ़िया मेरा रिलेशन है, अच्छे मैं सुन रहा हूँ
0: जी। तो परिवार में पहले जो है कोई सुनता रहा है रेडियो जिसे सुनकर या देखकर आप इससे प्रभावित हुए?
1: हाँ बिल्कुल सर, मेरे भाई थे वो एक्चुअली चिट्ठी वगैरह भी पाते थे, डालते थे।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसमें क्या काफी फरमाइश के वो गीत देते थे
0: जी,
1: तो उसको देखते कि मुझे भी शौक मतलब जागा मेरे अंदर, तो मैं भी आज रेडियो के साथ जुड़ा हूँ सर।
0: बिल्कुल। तो अनिल जी, तमाम सुनने वाले श्रोताओं को बताएं कि क्या व्यवसाय आप करते हैं और परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके?
1: तो एक सर मेरा काम है फोटोग्राफी का और मैं अपने काम के साथ साथ आकाशवाणी जुड़ा रहता हूँ, और परिवार में बेटा है, बहू रानी है और वाइफ है।
0: तो अनिल जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताइए, आप फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, यानी आप एक तरह से जो है कला प्रेमी हैं और खूबसूरत चीजों को अपनी अपने कैमरे के माध्यम से उन यादों को संजोते हैं। तो इसमें ये भी बताएं कि पहले और आज में कितना परिवर्तन आया है, इसमें ये भी तमाम श्रोताओं को बताएं, क्योंकि पहले तो अब तो काफी डिजिटल कैमरे आ गए होंगे, थोड़ा सा जानकारी दें।
1: बिल्कुल सर, जो जब हम कम काम मैंने सीखना शुरू किया था ना
0: जी,
1: तो वो दौर था ब्लैक एंड व्हाइट का, वो सारा काम मैनुअल था
0: जी जी,
1: डार्क रूम में जाके पहले फिल्म को डेवलप करना, ऐसी फोटो प्रोसेस था, फोटो मतलब बनानी हुई इंदाजर के ऊपर। आजकल तो बहुत काम इजी हो चुका है जी सर, सब कुछ डिस्प्ले में हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आप क्या कर रहे हो, मतलब आजकल डिजिटल का जमाना है, वो मेहनत तो आजकल है ही नहीं मतलब कहने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जब हम काम करते थे सीखते थे उस तक बहुत मेहनत सर, कभी कभी क्या पर डार्क रूम में लाइट चली जाती अंधेरे में, और क्या पंखा बंद हो जाता था, दौर था वो।
0: बिल्कुल, वो दौर काफी मुश्किल था और कभी कभी बहुत सी चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता रहा होगा उस दौर में।
1: जी सर बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो ये भी बताएं, देखिए आप काफी पुराने श्रोता हैं और बचपन से आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन पा रहे हैं, ये बताइए कि पहले के मुकाबले आज में कितना परिवर्तन आया है आकाशवाणी के कार्यक्रमों में या रेडियो कितना बदल गया?
1: सर ऐसे है कि देखिए जिनका लगाव है
0: जी
1: वो तो सुनते हैं, मैं देख रहा हूँ क्या युवा भी बहुत मतलब इसको रेडियो को सुनते हैं। और देखो जो पहले दौर था वो तो एक रेडियो का दौर था, सही पूछो तो
0: जी,
1: क्योंकि रेडियो ही था जो हमें दूर दूर से जो क्या घट रहा है, क्या दूर खबरें हम अंदर पाती थी।
0: बिल्कुल।
1: आज क्या क्या, चलो डिजिटल का टाइम है, टाइम के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। और लेकिन जो सभ्यता जो संस्कार हमें रेडियो से मिलते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो हम टीवी से नहीं ले सकते।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जिस तरह से आपने कहा फोटोग्राफी के काम से आप जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि रेडियो चल रहा हो और आप अपने काम को भी करते रहें, ये कहीं ना कहीं काम के आनंद को बढ़ा देता है और आपको किसी भी तरीके से आपके काम में कोई व्यवधान नहीं आने देता है ना।
1: बिल्कुल कोई बाधा नहीं आती, काम अपना करते रहो, रेडियो सुनते रहो
0: जी जी जी,
1: और अपना आनंदित होते रहो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी, काफी लंबे समय से आप तो आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन पा रहे हैं, आप अपने क्षेत्र सुनाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें।
1: सर सुनाम क्षेत्र हमारा है शहीद उधम सिंह का, शायद आपने नाम सुना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: उनकी ये जन्मभूमि है ये।
0: अरे क्या बात है।
1: और जब श्री राम जी को वनवास हुआ था ना, तो उस समय के दौरान माता सीता ने यहाँ अपने के नाम में,
0: अच्छा,
1: तो उन्हीं के नाम से यहाँ एक मंदिर है सीता सर, यहाँ बहुत दूर दूर लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा जो होती है पूरी हो जाती है उनकी भावना।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने अपने क्षेत्र के बारे में, हमारे बहुत से श्रोता ऐसे जरूर रहे होंगे जिन्हें जानकारी नहीं होगी। तो जो है आखिर में तमाम सुनने वाले जो श्रोता हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के कार्यक्रम परिक्रमा के माध्यम से?
1: सर मैं तो यही कहूंगा कि आकाशवाणी से जुड़े रहो, क्योंकि जो हमें अच्छी जानकारी आकाशवाणी से रेडियो से मिलती है, और जो हमें संस्कार मिलते हैं वो रेडियो से मिलते हैं हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: जितने युवा उनसे मैं यही कहूंगा कि रेडियो सुनते रहो और अपना जो अपना जीवन है उसको सार्थक करते रहो।
1: बिल्कुल सही बात है। और अनिल जी, गर्मी बढ़ रही है लगातार, आपके क्षेत्र में कैसा मौसम है?
0: बिल्कुल सर, आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है 43 के नियर अबाउट चल रहा है हमारे पंजाब में। और मैं यही कहूंगा, हम तो देखो पानी पी लेते हैं मांग के इधर उधर, लेकिन जो पक्षी हैं, परिंदे हैं,
1: जी जी जी,
0: उनके लिए पानी बहुत जरूरी है। हमें अपने घरों की छत के ऊपर जैसे भी हमें कोई सुविधा हो, हमारे घर के बाहर या अंदर
1: थोड़ी छाया की व्यवस्था हो, जहाँ पानी ठीक ठाक ठंडा रहे, कोई शेड वगैरह हो उसके नीचे आप रख सकते हैं पानी।

0: और सुनाम पंजाब से आप जो है हमसे इस कार्यक्रम से जुड़े थे और अपने जीवन के बारे में तमाम जानकारी आपने दी और किस तरीके से रेडियो आपकी जीवन का अहम हिस्सा है ये आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। चंद पंक्ति बोलूंगा अगर आपकी इजाजत हो।
0: हाँ हाँ जरूर बोलें।
1: ना घमंड में रहता हूँ ना गरूर में रहता हूँ, मैं तो आकाशवाणी हिसार का दीवाना हूँ, बस इसी के सुरूर में रहता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत सुंदर।
2: मैं

के प्रस्तुत करता थे पवन कुमार। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय तमाम गतिविधियों को पिरोकर हाजिर होंगे कार्यक्रम परिक्रमा में। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त विवेक कुमार को दें इजाजत। नमस्कार। परिक्रमा।

0: दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
4: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
4: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
3: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
4: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
3: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
5: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आपको पता है,
6: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं परिक्रमा, प्रस्तुति थी विवेक कुमार की। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता। शरीर की गतिशीलता और संतुलन के लिए आवश्यक है योग। भेंटदाता रहेंगे वीरेंद्र सिंह।

आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़। मैं मोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री वीरेंद्र बड़ाला जी। जैसा कि आपको पता है, अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और जगह जगह पर योग को लेकर के जागरूक करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्कों के अंदर शिविर लगाए जा रहे हैं। और योग का देखिए बड़ा महत्व है जिंदगी के अंदर। हर किसी को योग करना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग है या युवा है, क्योंकि आज के समय में योग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है बीते कुछ सालों के अंदर, क्योंकि लोग तनावग्रस्त रहते हैं, लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तो योग का महत्व और भी ज्यादा बीते कुछ सालों में

0: बढ़ गया है और कोविड के बाद तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो हमारे साथ वीरेंद्र बड़ाला जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। वीरेंद्र जी
1: जी धन्यवाद
0: जी, आप पतंजलि योग समिति में जिला प्रभारी हैं और साथ में नलवा में आप लेक्चरर भी हैं, पीजीटी इंग्लिश आप हैं
1: जी। जी
0: मैं जानना चाहता हूं, बीते कुछ सालों में जो योग को लेकर के पूरे भारतवर्ष में, और मैंने तो यहां तक देखा है कि दूसरे देशों के अंदर भी योग को लेकर के एक बहुत क्रेज हमने देखा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन सालों में कितना बदलाव लोगों के अंदर योग को लेकर के आया है, लोग योग का महत्व कितना समझ पाए हैं।
1: मोहित जी, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और यदि हम बीते वर्षों की बात करें तो मैं योग से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में मैंने योग सीखा और फिर उसके प्रचार प्रसार में हम लगे, तो हमने देखा कि पहले थोड़े बहुत लोग जैसे योग में आते थे, तो स्वामी जी महाराज ने गांव गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के योग से शुरू किए, तो लोगों का रुझान बढ़ा, प्रचार प्रसार हुआ। और जब मोदी जी ने इसको संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रस्ताव रखा 2014 में, तो और 2015 में ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को स्थापित किया गया, तो एक वहां पर महसूस किया गया कि ग्लोबल लेवल पर कि योग की हर व्यक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान में बहुत ज्यादा तनावग्रस्त वातावरण, जैसे हम देखें कि पूरे विश्व में युद्धों का वातावरण बना हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई चीज इन चीजों से उबार सकती है तो योग ही है।
0: बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आपने कहां कहां और अभी तक कितने शिविर आपने लगाए हैं और कितने लाभार्थी हुए हैं?
1: अगर गिनती की बात करें, ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं गिन सकते, लेकिन हमारा अनुमान है कि अगर मैं मेरी बात करूं तो आमने सामने बैठ करके लोगों ने, मेरे सामने 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक योग सीखा है। और हर साल हम एक ड्राइव चलाते हैं योग का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है तो उसमें हम इस जून और जुलाई और अप्रैल मई से लग जाते हैं तैयारियों में। अभी भी जैसे हमने शहर के अंदर जो हिसार की बात करें तो प्रत्येक पार्क में हमने योग शिविर लगाए हैं, जैसे और प्रत्येक वार्ड में हमने लगाए हैं। वार्ड के एमसी से मिलकर के, नगर निगम के अध्यक्ष से मिलकर के, महापौर से मिलकर के, सबसे मिलकर के, अधिकारियों से मिलकर के हमने जन जन तक योग को पहुंचाने का कार्य किया है। आसपास के गाँव में भी हमने लगाया है। अभी हमारी योजना है कि हम हिसार जिले के प्रत्येक गांव में योग शिविर लगाएंगे 21 जून से पहले, और अभी भी एक बड़ा योग शिविर जिसमें हम योग टीचर तैयार कर रहे हैं, अपने यहाँ स्थानीय स्कूल में चल रहा है जो 15 दिन का प्रशिक्षण है, उसके अंदर हम बेसिक योग से लेकर के एडवांस योग तक की ट्रेनिंग देते हैं
0: जी। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, अभी 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा उसमें हमारे हरियाणा के और पूरे भारत के सभी बड़े बड़े संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में योग शिविर लगाए जाएंगे। एक चीज और देखने को मिलती है वीरेंद्र जी, जैसे जब योग शिविर होता है वहां तो लोग पहुंच जाते हैं, चाहे वो 3 दिवसीय हो, 5 दिवसीय हो, लेकिन उसके बाद 5 दिन तो करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं?
1: इसकी वजह है कि लोग, अगर हम एक्चुअली देखें तो योग को, उसके महत्व को डीपली नहीं समझ पाए हैं। लोगों को इंस्टेंट रिलीफ के लिए थोड़ा सा मानसिकता बनी हुई है कि मुझे जल्दी बस कोई, जैसे मान सिर में दर्द हुआ तो एक टेबलेट ली और मैं ठीक हो गया, जैसे इस प्रकार की मानसिकता। लेकिन अब थोड़ी जागरूकता भी आ रही है अगर माने वर्तमान में, क्योंकि आजकल बहुत से डॉक्टर्स भी इस चीज को समझने लगे हैं, वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप योग से जुड़िए। तो क्योंकि डॉक्टर जब कहता है तो उसके पेशेंट के लिए भगवान के रूप में काम करता है, तो उसकी मानता है वो। तो जो लोग अभी शिविरों में जैसे आ रहे हैं, तो शिविरों का काम है कि उसको विधियां, तरीके, सावधानियां आदि से ढंग से सिखा करके हम ट्रेन करके भेजें ताकि वो अपना योग का कार्य को आगे बढ़ा सके, चला सके। अभी हमारा जो लक्ष्य है ना, प्रत्येक घर में एक योग शिक्षक, प्रशिक्षक तैयार करने का है। जिस प्रकार से फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे फैमिली योग डॉक्टर होना चाहिए, घर में उसकी आवश्यकता है। और वो इसी काम को करेगा कि हर व्यक्ति को सुबह जगाए, घर के व्यक्ति को उनको योग करवाए, उसके लिए जागरूक करे ताकि कोई भी व्यक्ति इसको मिस ना करे। ये योग कोई पार्ट में करने का या जीवन में कभी कभी करने का विषय नहीं है, ये जीवन शैली है, ये प्रातःकाल से शुरू होनी चाहिए हर रोज, ये लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक योग का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
0: एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे लोग छोटी छोटी डिजीज जो बॉडी में हो जाती है तो दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप लोग, खुद स्वामी रामदेव जी भी ये कहते हैं कि क्रोनिक डिजीज में भी योग जो है, जो बड़ी से बड़ी गंभीर समस्याएं होती हैं उनमें भी योग बहुत हद तक कारगर है। तो आपका क्या मानना है, श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप किस प्रकार से छोटी मोटी बीमारियां, बल्कि गंभीर बीमारियों में भी योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं?
1: मोहित जी, मैं आप सबके माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि

0: योग एक ऐसा विषय है जो शरीर के ऊपर गहरे से प्रभाव डालता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि योग का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन हमारा अनुभव यह है कि योग का प्रभाव उसी क्षण पड़ना शुरू हो जाता है जब शुरू करता है व्यक्ति। और अगर बात करें गंभीर बीमारियों की, तो पतंजलि योगपीठ में तो लगभग 500 साइंटिस्ट इसके ऊपर देर रात काम कर रहे हैं, जो रिसर्च के रूप में योग को लेकर चल रहे हैं कि इसका प्रत्येक स्ट्रोक, जैसे हम कपालभाती करते थे, एक स्ट्रोक से बॉडी के ऊपर कैसा कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अनुलोम विलोम का मानना हम करें तो एक राउंड हम करते हैं तो उसका बॉडी के नर्व सिस्टम के ऊपर, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, उस रिसर्च के रूप में काम करते हैं। और मैं तो ये बताना चाहूंगा कि ये योग को अगर एक बार समझ लिया जाए, उसकी विधियों को जान लिया जाए, तरीके को समझ लिया जाए, तो फिर ये इंजेक्शन की तरह काम करता है। जैसे मान लो किसी को सिर में दर्द है तो व्यक्ति तुरंत सोचता मैं चाय पी लूं, पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरे ऑप्शन सोचता कि कोई दवाई गोली ले लूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 5 मिनट वो अनुलोम विलोम कर ले तो गारंटी के साथ उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। और सिर दर्द की बात करें तो माइग्रेन तक के रोग जो अन्य दवाइयों से ठीक नहीं हुए, हमने ऐसे ऐसे देखे 20-25 साल पुराने माइग्रेन, वो योग करने से ठीक हो गए।
1: लेकिन आमतौर पर देखा यह जाता है किसी को अगर सर में दर्द है तो वो एक गोली लेने के बाद चाय पीने के लिए ज्यादा उचित समझता है बजाय कि अनुलोम विलोम करने के, जैसा आपने बताया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा वीरेंद्र जी आपसे कि बहुत बार आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, वो शारीरिक रूप से जिम जा करके अपने शरीर को हष्टपुष्ट बना लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो कमजोर प्रतीत होते हैं, ऐसा दिखाई देता है आमतौर पर। योग के माध्यम से जो यंग जनरेशन है, जो युवक हैं, युवतियां हैं, बाहर से अगर फिट हैं लेकिन अंदरूनी मानसिक रूप से काफी कमजोर होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं इस बार, ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया कि युवा अवस्था में जो बच्चे हैं वो योग की तरफ कम ध्यान देते हैं। उसका कारण ये है कि वो अपने शरीर को, अगर हम दो भागों में बांटे ना, एक आउटर एक्सटर्नल बॉडी, एक इंटरनल बॉडी, तो वो केवल एक्सटर्नल बॉडी पर काम करते हैं, बाहर से कैसा दिखता
1: है, जिम को ज्यादा प्रेफर करते
0: हैं। जिम में क्या है कि जैसे चाहे वैसे बॉडी की शेप बना लेते हैं,
1: वो कहते हैं ये योग तो बूढ़ों का काम है।
0: यस यस यस। और अगर बुढ़ापा नहीं आएगा, मतलब बुढ़ापे से पहले चल बैठे तो बुढ़ापे में भी क्या काम आया फिर वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आजकल अभी भी अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो स्लोगन है वो यही है कि गुड एजिंग के लिए योग, अच्छी एजिंग हमारी हो, बुढ़ापा हमारा अच्छा हो, हेल्दी एजिंग हो, उसके लिए योग हो। उसके लिए हमने बचपन से ही तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छा बुढ़ापा बीते। तो जैसे आपकी बात थी कि युवा अवस्था में बच्चे जो है वो एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो मेन पार्ट है बॉडी का, वो हमारा इंटरनल बॉडी है, जिसके सारे हमारा शरीर चलता है। जैसे हमारा मन है, हमारे विचार है, हमारे अंदर जो अंग है जो काम कर रहे हैं, हार्ट है, हमारा बीपी कैसे चल रहा है, हमारा इंसुलिन कैसे बन रहा है, वो चीजें हमारे ज्यादा इफेक्टिव है, हमारा कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे काम कर रहा है। आज देखें तो 20-20 साल के, 15-15 साल के, 25-25 साल के युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है। वो शरीर से तो हेल्दी है, दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरनली वो जो है वो कमजोर हो चुके हैं। तो उसके लिए योग काम करता है, उसके लिए प्राणायाम मुख्य रूप से काम करता है। तो उसके ऊपर मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि आप बेशक कितने ही प्रैक्टिस बाहर की करें, अच्छी बात है, लेकिन आप प्राणायाम से जरूर जुड़िए, योग से जरूर जुड़िए। बेशक आप 15-20 मिनट आप प्राणायाम करेंगे तो भी आपका शरीर पूरी तरह से इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों ही सुदृढ़ होगा।
1: तो वीरेंद्र जी, थोड़ा सा और आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं चाहूंगा आप ये बताएं कि जो एक तो होते हैं योगासन और एक होते हैं प्राणायाम, कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आसन ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राणायाम है, और पांचों प्राणायाम जो हम सुनते आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा और बताएं।
0: देखो, अगर हमें महत्व की बात करें तो वैसे तो आसन और प्राणायाम दोनों का ही रोल है बॉडी के लिए। बॉडी माइंड एंड सोल, ये तीनों चीजों को हमें अलाइनमेंट में रखना है। बॉडी का वेट ना बढ़े, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ना बढ़े, हमारा माइंड जो है वो सही ढंग से काम करे, और हमारी सोल वो भी प्योरिटी के साथ काम करे, इसके लिए योग काम करता है। योग का काम ही जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अगर हम बात करें महत्व की, तो हमने दोनों को ही महत्व को समान रूप से समझना पड़ेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा डिफरेंस करके चले, कम ज्यादा सोचे कंपेरेटिवली, तो फिर प्राणायाम का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि प्राणायाम न केवल बॉडी को ठीक करता है बल्कि हमारे माइंड और सोल को भी ठीक करता है। ये हमारी सॉफ्ट बॉडी को जो है और अधिक स्ट्रेंथन बनाता है और इसको और अधिक रेगुलर करता है, हमारी सॉफ्ट बॉडी, हमारा जो अंदर का जो पार्ट्स है उनको सही ढंग से चलाता है।
1: अगर प्राणायामों की बात करें तो ऐसे आप 2 या 3 महत्वपूर्ण प्राणायाम बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: बहुत अच्छा। जैसे कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो चैलेंज थे हमारे लंग्स के थे, जिसके लंग्स कमजोर, तो वो व्यक्ति कोरोना की चपेट में आया और कई तो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे। तो ऐसे में सबसे पहले हमने लंग्स को इनको अधिक मजबूत बनाना

0: अत्यंत हमारे लिए आवश्यक है। उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग जिसको कह सकते हैं, डीप ब्रीदिंग में कुछ सा जो तरीका है वो क्या है, ब्रीदिंग करते वक्त जैसे हम इनहेल कर रहे हैं तो हम फेफड़ों को फुलाएं, एक्सहेल कर रहे हैं फेफड़ों को सिकोड़ें। ये दो प्रोसेस हमने इसमें ध्यान से करनी है। और एक प्राणायाम है कपालभाति, जिसको वैसे तो षटकर्म की क्रियाओं में भी आता है ये, लेकिन इसको प्राणायाम की श्रेणी में ले लिया गया है। उसमें क्या है कि हम फोर्सफुली श्वास को बाहर फेंकते हैं, उससे हमारा नाभि क्षेत्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा डाइजेशन सबसे पहले सही होता है। डाइजेशन सही होता है तो हमारा शरीर में बनने वाली भोजन से 7 प्रकार के रस जो है वो सही बनते हैं, जैसे उनके नाम रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, शुक्र है, उससे हमारा शरीर बनता है, चलता है और उसको ताकत मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। और तीसरा जो प्राणायाम वेरी इंपॉर्टेंट है वो है अनुलोम विलोम, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम सही रहता है, इससे हमारा तनाव है, अनिद्रा है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, भूलने की प्रॉब्लम है, बच्चों का माइंड का ग्रोथ होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और आज के समय अगर तनाव की ही बात करें तो बहुत अधिक बढ़ रहा है, उसके लिए दो और प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत, एक हमिंग और एक मुख से ओम का उच्चारण हम करते हैं, ये दोनों ही प्राणायाम बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये 5 प्राणायाम अगर व्यक्ति रोजाना करता है तो पूरे जीवन भर वो अच्छी प्रकार से जीवन जीता है।
1: श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें आपको बताई गई आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया, कहा वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है, ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की, 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हुर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
3: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
3: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
5: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक सीरी नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए

0: ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। December 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक, ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था उलझन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बारात। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

इस युगल गान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

वासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि वासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में वासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

0: फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।
1: चलत मुसाफिर।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच वासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

वासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए वासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। वासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि वासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए वासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: बासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी

0: बता नहीं पाऊंगी।
1: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
2: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

0: 20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।
1: लड़कपन खेल में खोया।

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति

রবীশ গোখলে। আজকে ফানকার।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी हिसार है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हेलो हिसार कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। प्रस्तुति रहेगी प्रीति ढिंढोरिया की।
1: हेलो हिसार
2: हेलो हिसार
3: हिसार

0: नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जब बातें दिल से हो तो फासले मिट जाते हैं, और जब आवाज में अपनापन हो तो शहर गांव गली सब एक हो जाते हैं। हम भी आज यही करने आए हैं, आपसे, आपकी बातों से, आपकी मुस्कान से रिश्ता जोड़ने। हर दिन कुछ नया कहता है, कभी मौसम से, कभी मन से, कभी किसी प्यारे से जन से। तो आज का ये हलो हिसार का सफर भी करते हैं शुरुआत थोड़ी गपशप, थोड़ी मुस्कुराहट और ढेर सारे प्यार के साथ। फोन उठाइए और बताइए क्या चल रहा है आपके दिल में, क्या सुनना चाहते हैं आप, और आपकी जिंदगी में आपका मूड कैसा है, खुशियों वाला है या सोचने वाला है। क्योंकि यहाँ हर बात सुनी जाएगी, हर कहानी महसूस की जाएगी। तो आप हैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ, ये है आपका अपना प्यारा दुलारा शो हलो हिसार, जहाँ आप हैं सितारे, आपकी बातें हैं चमकती किरणें। तो आइए शुरू करें आज का ये प्यारा सा फोन इन कार्यक्रम हलो हिसार। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हिसार कार्यक्रम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं विजय सिंह लखेरा बोल रहा हूँ, वीरभूमि खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से। जी
0: कैसे हैं विजय जी?
1: बहुत बढ़िया है जी।
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है मैम जी।
0: अच्छा, मौसम कैसा है आपके वहाँ?
1: मौसम तो 3-4 रोज पहले तो हल्की फुल्की बारिश आई थी, जब तो खुला मौसम है, थोड़ी सी हल्की फुल्की धूप भी है जी।
0: अच्छा जी, तो चलिए आप बता दीजिए इतने सुहावने मौसम में गीत कौन सा सुनवाएंगे हमें?
1: मैम एक फिल्म का नाम है जी मजाल, और इसमें ये किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में गीत है जी, टिंग टिंग टिंग घंटी बजे।
0: ठीक है, हम आपकी पसंद जरूर पूरी करेंगे। कुछ और कहना चाहेंगे?
1: मैम कुछ मित्रों को याद करना चाहेंगे जी।
0: जी लीजिए ना।
1: जी सर, मैं रामदास अग्रवाल जी, हरपाल जी है, राजेंद्र सैनी जी, प्रकाश अम्बावता जी है, और द्वारका से एक दोस्त है, और सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे जी।
0: जी सुनिए अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ मजाल फिल्म का ये खूबसूरत गीत
1: जी। थैंक यू, धन्यवाद जी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रहे हैं हमसे?
1: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी। बहुत
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: मजे में है बहन जी, आपके कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं।
0: जी
1: पहले नमस्ते हिसार में जुड़ते हैं और इसमें भी जुड़ जाते हैं तो बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा, हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ज्ञानवर्धक भी हैं
0: जी
1: और हमें प्रसन्नता भी देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही तो ध्येय है आकाशवाणी का,
1: हाँ बिल्कुल जी,
0: सूचना, ज्ञान
1: बिल्कुल,
0: और
1: अपने
0: मनोरंजन।
1: ध्येय में बिल्कुल पूरी तरह सफल है हिसार
0: जी
1: आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: बहन जी, आज मैं गीत सुनूंगा, फिल्म है दो बदन, रफी साहब जी की आवाज है।
0: जी, कौन सा गीत?
1: गीत के बोल मैं तरन्न में बताता
0: जी,
1: हूँ।
0: स्वागत है आपका।
1: भरी दुनिया में आखिर दिल,

0: इनको वो दीवाने कहा जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को
1: बहुत।

0: हेलो
1: हेलो विशार आदरणीय दीदी, सादर नमस्कार
0: जी। नमस्कार शारदा प्रसाद जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे
1: जी।
0: कार्यक्रम में।
1: आपने सही पहचाना, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। हेलो विशार कार्यक्रम में दीदी, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ
0: जी
1: और आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
0: जी शारदा प्रसाद जी, सबसे पहली बात तो जो आपका अंदाज है ना, ये हमें बता देता है कि हम किससे बात कर रहे हैं।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद
0: जी। कैसे हैं आप और बताइए, घर परिवार में सब कुशल मंगल?
1: जी, आपका आशीर्वाद है, बांके बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना हमारा शौक है, दीवानगी है, और
0: जी
1: जब आपसे वार्तालाप होती है बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस होता है, हृदय
0: जी
1: खुल तो गदगद हो जाता है कि हम
0: बिल्कुल
1: भी आने के एक नियमित श्रोता बन चुके हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमारे श्रोता साथी इतना समय निकालते, इतना प्यार देते हैं आकाशवाणी हिसार को। बताइए आज कौन सी फरमाइश आपकी पूरी की जाए?
1: यदि आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सौदागर, पुरानी वाली,
0: कौन सा
1: और
0: गीत?
1: किशोर कुमार साहब ने गीत को गाया है, अमिताभ बच्चन पर ये अभिनीत फिल्म है। मैं हर हसी चीज का तलबगार हूँ।
0: जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत आप सुनना चाहते हैं
1: जी जी बहुत ही
0: जी।
1: प्यारा सुरीला गीत है, मैं हर हसीन चीज का तलबगार हूँ। इसमें अमिताभ बच्चन, नूतन जी ने काम किया है, बहुत अच्छा लगता है। जितनी अच्छी फिल्म है उतनी अच्छी खूबसूरत गीत है, और हमारे जो रविंद्र जैन साहब हैं इनका संगीत है।
0: बहुत आप अच्छी जानकारी रखते हैं गीतों के बारे में।
1: जी, आप
0: चलिए
1: लोगों से सीखते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा
0: जी
1: जो है जानकारी मिलती है, और हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा याददाश्त अपने नाक
0: बिल्कुल
1: रखें,
0: जी
1: जिससे
0: जी
1: कि
0: जी
1: हम ये सब चीजें आपको गीत के
0: जी
1: फरमाइश के दौरान।
0: शारदा प्रसाद जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से वार्तालाप कर रहा हूँ। बहन जी,
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम बाहुबली है।
0: बाहुबली जी, नाम तो बहुत अच्छा है आपका।
1: ये नाम तो हमारे माता पिता की देन है,
0: जी जी जी
1: इसमें हमारा तो कोई सहभाग नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता की देन जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो नाम हो, चाहे सम्मान हो, कुछ भी हो। जी,
1: जी
0: आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, फिल्म दिल तेरा दीवाना।
0: जी, ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। कुछ और कहना चाहेंगे क्या?
1: क्या बोले?
0: कुछ और कहना चाहते हैं क्या?
1: जी, और अभी तो मेरी उम्र 84 साल चालू है बहन जी,
0: जी
1: मगर बचपन से आकाशवाणी से मैं ता हूँ, और गीतों का चयन और अनाउंसर जो भी भाई बहने होती है उनसे विचारों का आदान।

0: के बाद भी आप हमें सुनते हैं, सराहते हैं, बताते हैं। ऐसे ही आप हमारा जो हौसला बढ़ाते रहे, कार्यक्रमों से जुड़ते रहे। कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: जी जी जी और आप जैसे बहनों का मधुर वाणी और उनकी प्रेरणा से मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है
0: जी
1: और मैं फोन लगाने में सफल हो जाता हूँ।
0: जी जी
1: यह
0: ऐसे ही आप
1: मेरा
0: ऊर्जावान
1: सौभाग्य
0: रहिए
1: समझता
0: जी। हमारा भी सौभाग्य है, हम हमारे इतने वरिष्ठ श्रोताओं से बात कर पाते हैं, उनकी फरमाइशें पूरी कर पाते हैं। खूबसूरत सा
1: हूँ।
0: गीत।
1: आकाशवाणी ने 90 साल बड़े सफलता पूर्वक और सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध और उनको विविध जानकारी, मनोरंजन तथा अनेक आरोग्य प्रद और खेती बाड़ी में सहायता की है।
0: जी
1: इसके लिए मैं आकाशवाणी को बधाई देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: मैम, नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी अंग्रेज सिंह, गिरधर चंदरवाजा, डिस्ट्रिक्ट की पंजाब से। जी
0: पंजाब से बात कर रहे हैं आप, क्या करते
1: जी
0: हैं आप? हेलो
1: मैम,
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: मेरी शॉप है जी, टेलीकॉम है जी। जी
0: अच्छा जी, आपकी शॉप है। गीत सुनते रहते हैं रेडियो पर।
1: बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, चलता रहता है।
0: अच्छा, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत सुना मैडम जी, बेताब फिल्म का, जब हम जुबां होंगे। जी
0: बहुत प्यारा गीत आप सुनना चाहते हैं
1: मैम, शुक्रिया
0: जी, कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए बेताब फिल्म
1: जी,
0: का ये
1: धन्यवाद
0: खूबसूरत
1: मैडम जी,
0: गीत।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
1: मैडम जी,
0: आपका।
1: गांधी चौक से बोल रहा था, राजेश जैन।
0: जी राजेश जैन जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। काम
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। काम काज अच्छा चल रहा है
1: तो जी कभी तो अच्छा हो जाता है, पता नहीं गांव के ऊपर है। जैसे परसों
0: जी?
1: पहले दिन अच्छा था,
0: जी कोई
1: अभी
0: बात
1: तो बस
0: नहीं,
1: ऐसे ही है। ये 2-4 साए रह गए ना, तो
0: बिल्कुल
1: फिर
0: बिल्कुल
1: आगे बारिश होगी तो मंदा आएगा 1-2 महीने।
0: जी। परमपिता की माया, कहीं धूप कहीं छाया, कभी ज्यादा तो कभी कम चलता ही
1: ऐसे ही है जी।
0: रहता है।
1: वैसे बच्चे नहीं बैठते हमारे दुकान पर, बच्चों का सब। आपके एक बेटा तो मैनेजर है बैंक में, आपके पास ही है।
0: अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर।
1: हाँ जी,
0: बताइए
1: एक
0: राजेश
1: गाना था
0: जी।
1: मैडम जी,
0: हाँ
1: फिल्म का
0: जी,
1: गाना, प्रेम
0: कौन सा गीत?
1: रोग फिल्म का गाना था, तो उसमें मोहब्बत है क्या चीज हमको बता दो, ये किसने शुरू हमें
0: चलिए, आपकी
1: भी
0: फरमाइश
1: बताओ।
0: पूरा कर रहे हैं, सुनिए
1: ये
0: अपने रेडियो सेट पर ध्वनि तरंगों के माध्यम से।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत
1: मैं
0: स्वागत है
1: क्रिश्चियन
0: आपका।
1: ज्ञान बोल रहा हूँ, गांव देवराय साहब से। बढ़िया
0: जी वीरेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: मैम जी, आप बताओ आप कैसे हो।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है मैम जी। आप प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। अभी मैम जी ये क्या बोलते हैं, बाजरा की बिजाई की है और खेतों में पानी लगाया मैम जी।
0: चलिए वीरेंद्र जी, ऐसे ही आप काम करते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आज मैम जी फिल्म रहेगी नाम गुम जाएगा, और उसमें कुमार सानू और कायद ने जवाब में गीत है जी, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है।
0: ठीक है, आपकी फरमाइश हम पूरा कर रहे हैं। कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: जी धन्यवाद मैम जी आपका भी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार प्रीति भिंडोरिया
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं
1: जी। गांव बरुआ से विनोद में और बोलो जी। अच्छे
0: जी? कैसे हैं?
1: मैं
0: काम काज अच्छा चल रहा है?
1: अच्छा, सदे बारिश हो गई अच्छी जी, विदाई भी चल रही है साथ में जी।
0: रेडियो भी चल रहा है साथ में, है ना?
1: सारे रेडियो चल रहे जी।
0: बिल्कुल। बताइए, गीत कौन सा सुनवाए आज आपको आपके रेडियो पर?
1: गीत तो ये सुनाती है जी, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर ना मिलते जन्म में तो लेते जन्म दोबारा।
0: बहुत प्यारा गीत आप सुनना चाहते हैं
1: हाँ जी,
0: जी। कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद जी।

0: तो दोस्तों, बातें तो इतनी हुई कि वक्त का पता ही नहीं चला। हर कॉल, हर आवाज एक नया एहसास लेकर आई। किसी ने हंसी बांटी तो किसी ने दर्द का जिक्र किया, किसी ने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां सुनाई। तो यही तो खासियत है हमारे हलो हिसार शो की। यह कोई मंच नहीं है, एक महफिल है जहां हर सुनने वाला भी अपनेपन से जुड़ जाता है। अब वक्त है विदा लेने का, पर बातें यहीं खत्म नहीं होती। हर शब्द, हर मुस्कान कहीं ना कहीं हमारे दिल में ठहर जाती है। फिर मिलेंगे नए जज्बातों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, खुश रहिए और याद रखिए, जिंदगी की सबसे अच्छी बातें कभी यूं ही किसी फोन कॉल से शुरू हो जाती हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हलो हिसार, आपकी अपनी रेडियो हम सफर, प्रीति ढिंडोरिया के साथ। तो शुक्रिया दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इसी प्यार और हंसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार, हिसार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
6: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
5: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
6: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
5: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
6: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
5: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
6: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
7: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
8: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
9: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
8: क्या ये जांच उपलब्ध है?
7: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
10: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
7: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
10: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
11: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिक के विदेश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today said that tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, empowered by a range of welfare and outreach initiatives of the centre. Addressing the public gathering at Rairangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Manjhi. He said the centre's Purvodaya mission aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: On the occasion, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sector. Later, Prime Minister Narendra Modi today took part in Pashchim Banga Devas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. He also launched, dedicated and laid the foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur of worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Phadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said, the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency, that is NTA, has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the NEET UG 2026 re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. At least 5 devotees lost their lives and 40 others were injured today after a portion of the temple structure collapsed in Manvat Taluka of Maharashtra's Parbhani district. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue operations were launched immediately following the collapse, with 20 to 25 people rescued from the debris. Around 15 injured devotees are currently undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Phadnavis expressed deep sorrow over the tragedy and announced financial assistance of Rs. 5 lakh each for the families of those who lost their lives in the accident. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai today. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing 1 wicket. India Meteorological Department has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है 11:10 और तकरीबन 20 सेकंड। ये वक्त है बहुत ही कीमती, क्योंकि इस वक्त में मुलाकात
3: से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
4: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
4: जी,
2: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते, आप स्वेटर भी बुनते, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, तो इस तरह की जो योजना। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया

0: बनाना है अपने घर में। मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है, जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहा है, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं
1: देगा। बहुत इंपॉर्टेंट
0: ये सशक्तिकरण, ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूं उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता
0: है। अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है, जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर
1: बिल्कुल,
0: और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलुओं को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजन जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55-56 हजार की होती थी, 140 करोड़ के देश ने केवल 56 हजार एमबीबीएस आप बना आ रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास की आजादी के बाद 2014

0: तक खोली गई थी वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बन चाहते हैं आपके लिए है ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
0: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लाइक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है।

और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी हैं, आईआईएम, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि

0: रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: और बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है, लगभग मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती थी। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट
0: में, 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक आप खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवोल्यूशन जो उनका किया है, और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वही बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिया कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके

0: उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ है ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखें कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ गई उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा, किसान को जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है

0: स्पेशली महिलाएं हैं तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे है तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी
1: जी।
0: तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं तो महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में
1: फिर
0: जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया
1: और एक तरह से हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो एमएसएमई आप देखिए ना, एमएसएमई सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है, तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही है, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा, और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही है वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल गिरा दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट,
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए।

0: इनको, ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशन है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होंगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे ना पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
2: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ू, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास होगा। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गई। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा कि
2: रामसर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो चार स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम। ये आकाशवाणी हिसार है FM बैंड 102.3 MHz पर। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह प्रथम सभा के अंतर्गत 5:53 पर आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक दीजिए आज्ञा। जय हिंद।